0: वनी।
1: अगला वचन कह अनेक उपाव, अनेक तरह के अस उपा करने, मन विच कई चिंतनियां बनाने कि मैं आने वाले साल च आ करांगा, मैं आ कुछ कमावांगा। हजूर कहिंदे ने हे प्रभु ये साडे ख्याल ने, पर यह ख्याल नहीं पूरे हो सकते जे तू ना चाहे। होवे ओ कुछ कि जो तेरे मन के अंदर है, जो तुसी करना चाहते हो। हजूर महाराज कहिंदे ने असी सोचने कोशां ते परमात्मा कुछ करदा है।
0: अपना भला सब कोई बादशाह सो करे जे मेरा चित ना चितनी।
1: हर बंदा अपने घर का भला चाहता है, सुख चाहता है, खुशहाली मंगता है, अपने घर विच प्रसन्नता मंगता है। पर महाराज कहिंदे ने असी बहुत कुछ चितवने आ, पर मेरे परमात्मा तू ओ कुछ घरां विच वापर फेड़ वरता देना जिहड़ी साडे चित ख्याल विच वी ने। तां ही सतगुरु ने एक बचन कहा घरों तुरीदा रात नूं आ सवेरे काम करना है, ते सवेरे सुनेहा मिल जांदा फलानी थां ते घटना वापर गई, बंदे दे सारे काम धरे धराए रह जांदे। मता करै पछम कै ताई पूर्व ही लै जा, हस्तो जाए सो रोवत आवै, रोवत जाए सो हसै, बस तो होए होए सो उजर, उजर होए सो बच। जो साडे चित ख्याल विच वी नहीं परमात्मा ओ कुछ साडे नाल भाणे वरता दिंदा है। इसे नूं बाबा जी ने बाणी च कहा कि दरियावै कन्नै बगला बैठा केल करे, केल करें दे खंज नूं अचिंते बाज पए, बाज पए तिस रब दे केलां विसरियां, जो मन चित ना चेते सन सो गाली रब की। साडे चित विच वी नहीं ओ कुछ परमात्मा ने कर दिता। महाराज जी ने ताई क्या हर की गत न को जाने, जोगी जति तपी पचहारे, अरबो लोक सियाने, छिनमै राव रंग को करी राव रंग कर डाले। कदी बंदा ए नहीं चाहता मैं दुख मिले, हर कोई भला मंगता है, पर परमात्मा जो साडे चित ख्याल विच वी नहीं तुसी ओ कुछ भाणे वरतांदे हो।
0: मन की मत ते अगो हार जाना एहा बात कठनी।
1: कहिंदे ओ रब दे प्यारे बंदेओ अपनी मन दी मत छड्ड दे, अपने अकल दे घोड़े दौड़ाने बंद कर दे। गुरु अंज ना करदा, गुरु अंज ही ना साडी मत। जे अमृत दी गल ना हुंदी अज सारी दुनिया सिख होनी सी, इह शब्द कई लोग वरते। जे ककार ना हुंदे आ कुछ होना सी, अपनी मत नूं अकल नूं छड्ड दे। हालांकि तेनूं मत्था टेकण इस करके रोज करके के दिया है भी रोज तां मत्था टेकना है, तू अपनी मत गुरु चरणा च रखना। जे अपनी मत नहीं छड्डनी, अपनी अकल दे घोड़े दौड़ाने ने, फिर गुरमत कित्थों मिलेगी। मन की मत त्यागो हरजन, पर महाराज कहिंदे एह बात कठिनी है, बड़ी मुश्किल। तां ही गुरु साहिब ने बाणी विच वी कह बचन के इत मार्ग चले भाइयड़े, गुर कहे सो कार कमाए जियो, त्यागे मन की मतली वे सारा दूजा पाओ जियो, क्यों पावै हर दरसावड़ा न लगे तत्ती वाओ जियो। आपां अपना भांडे दा कूड़ा करकट सटीए बाहर, ये भांडा ही है ना, अपने ख्याल अपनियां उक्तियां अपनियां जुगतियां अपनियां दलीलां, ये सारे भांडे नूं सटीए करके खाली बाहर सटीए कूड़ा करकट, ते गुरु कोल भांडा लिजा के कहिए मालका साडी मत विचों तां बो आउंदी ती तूं अपनी गुरमत पा। भांडा तां अपने कचरे नाल भरिया पिया ते मंगदे पिया गुरु तो अच्छी सां, पहला भांडा खर मन मत दा खाली कर। हुण आ दिन चलदे पए ना सराधां दे, बाबे ने ते कहा भी ना करियो जिउंदियां दे चरण पूजियो, जिउंदे मापिआं नूं तां बिरद आचरमां विच धक्कणे पए आ, ते हुण 36 प्रकार दे भोजन लोकी खवांदे होणे अजकल। बाबा जी दी इह मत सी वी इह कम नहीं करना, ते जे फिर भी आपां करी जांदे आ फिर मनमत ही होगी ना, गुरमत ते नहीं। अगां फिर अगां नराते आ जाणे, गुस्सा नूं की करियो। मैं इक तां कथा करन गया, हो सकदा उह सुणदे होणगे। मैं क्या भी तुसी इन्ने समा हो गया पिछे लगे सी भी टाइम दिओ टाइम दिओ, संगत नहीं आई। संगत थोड़ी कहिंदे भाई साहिब जी अजकल नराते चलते पए ने इस करके संगत नहीं आई। मैं क्या फिर साडा सर गया, फिर मैं की कथा करके तुहानूं सुणानी। मैं एक बेनती करांगा सिर्फ गुरु नूं पार ब्रह्म परमेश्वर जाण के पूजो, इन्हां कर्म कांडा तो अपने आप नूं बचा के निरोल केवल एक दी भगती। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਬਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਰੀਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸੰਗਲਾਂ ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਤੋੜ ਦੇ ਸੰਗਲ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰਜਨ, ਇਹ ਹਾਂ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ।
0: ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆਵਹੁ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀ ਮਤ ਲੈਨੀ।
1: ਫਿਰ ਕਿਆ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬੋ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਨ।

जे परमात्मा दे प्यार दी कहानी दो शब्दां विच आखनी होवे ना ते मां बाप आखदे उस निरंकार दे प्यार दी कहानी पूरी हो जांदी। मां बाप आखदे जे इक्को शब्द विच उस रब दे प्यार दी कहानी कहनी होवे ते इक्को ही शब्द कहना है ते मां आखदे ते उस रब दे प्यार दी व्याख्या पूरी हो जाती है। पढ़ो बाणी सतगुरां ने जगह जगह एक नहीं अनेकां शब्द उचारे ने उस निरंकार दे प्यार दी कहानी माता पिता दियां उदाहरणां दे के दसी किन्ने ही शब्दां विच तू मेरा पिता तू है मेरा माता जां होर किन्ने शब्द पढ़ लो हर जी माता हर जी पिता। सत्संगियो उस रब दा सवा मिलदा है माता पिता नाल पर किड्डा भी निकम्मा होवे मापे फिर गले नाल ला लेंदे ने कहंदे ने ना पुत्र कुपुत्र हो जांदे ने मापे कदी कुमापे नहीं होंदे। हिंदुस्तान दी धरती उपर अनेकां ही भगत होए ने पर एक भगत एहो जिहा होया है जिन्हें भगती नहीं कीती लोक ओनू फिर भी भगत कहिंदे। तको सत्संगियो भगती नहीं कीती लोक ओनू फिर भी भगत कहिंदे ने। भी क्यों फिर भगत कहिंदे ने क्योंकि उन्हें सारी जिंदगी अपने मापियां दी सेवा रज के कीती। भई ओ कौन है भाई गुरदास जी बाणी विच होवे सरबण विरला कोई ताई आखदे ने मापे ऐ रब्बा सरबण पुत्र दे उदाहरणा देंदे। मां बाप अंधे ने बुजुर्ग ने सत्संगियो कंधिया ते चुकी फिरदा है कोई गल नहीं मेरे मापिया दियां अखां नहीं मेरी मां मेरिया अखां नाल देख लवे मेरा बापू मेरिया अखां नाल तक लवे कोई नहीं बापू मां तेरा जी करदा है ना यात्रा ते जाण नूं कोई धार्मिक स्थान चकण वास्ते ते मैं तैनू कंधिया ते चुक के लै जावांगा। अंधे माता पिता नूं कंधिया ते चुकी फिरदा है ते ताईओ लोकी चंगे पुत्रां दियां उदाहरणां देंदे ने। अरदास है ऐ सतगुरु महाराज बख्शिश करो साडी जिंदगी दा वी इह दस्तूर बन जावे इह मर्यादा बन जावे असी भी अपने मापियां दी सेवा करिए असी भी अपने बजुर्गों की सेवा संभाल करिए क्योंकि जिन्ना चिर असी अपने मापियां दी संभाल बजुर्गों की सेवा नहीं करांगे गुरु नानक दे दरबार विच भी साड़ी सेवा प्रवान कोई जी नहीं होनी प्रवान होनी नहीं। जदों असी सेवा संभाल करांगे ये दस्तूर बन जाएगा फिर गुरु नानक महाराज भी साडे ते खुश होंगे लोग भी साडी शोभा करेंगे ते साडा कीता होया सिमरन फिर थाए पै जाएगा बन जाए जिंदगी दा ये दस्तूर नानक आओ मन वेतियां जोड़िए।

प्रतीक है, जाग लगाउण दा प्रतीक है। इसे माइकी मंडल दे दिमागी ज्ञानी दी इस मंडल दे विच पहुंच गई, क्योंकि माइकी मंडल दा दिमागी ज्ञान तो उक्तियां जुक्तियां जा एहड़ तेहड़ स्याणपां दे खंभ ओ आत्मिक मंडल दियां दामली क्लिष्टकां किरणां जा नाम दी रोशनी नाल सड़ जांदे हन। इसे करके गुरबाणी विच हुकम है, वणजारिया स्यों वणज कर लै लाहा मन हट, संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों व्योहारा, संतन स्यों हम लाहा खाट्या, हर भगत परे भंडारा, संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरियो मन का सोखा, संत प्रसाद हर नाम से आया, सर्व कुशल तब किया, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग वस्त अगोचर लहे, साधु के संग अजर सहे, साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साध के संग नहीं कछकाल, दर्शन पेशक होत निहाल, साध के संग लगे सब मीठा, साधु के संग कट कट दीठा, साध संगत के आसरे प्रभु स्यों रंग लाए। अकाल पुरख सैपम करता पुरख होण करके किसे बंधन जा हुकम विच नहीं है, वो आप हुक्मी है। अते उन्हें अपनी मौज विच त्रैगुणी माइकी मंडल अपने अपार ते अपुल हुकम द्वारा रचिया ते चला भी रहा है। एको हुकम वर्तदा एका सिरकारा, आपे साजे आपे रंगे आपे नजर करे, हुक्मी सृष्ट साजियन बौ पित संसारा, तेरा हुक्म न जापी केसड़ा, सच्चे अलख अपारा, आपे करे कराए आपे हुक्मे रया समाई है, चौदिस हुक्म वरते प्रभ तेरा चौदिस नाम पताल। हुण इलाही मंडल दे प्रकाश विच तां सिर्फ आत्मिक प्रेम स्वपना दा प्रकाश है, जिथे सदा आनंद सदा सुख सदा प्यार प्रेम रस महारस सच्चा रंग सदा चाओ सदा खेड़ा ते सदा हुण वरत रहा है। आत्मिक मंडल दी की निशानी है उदे प्रकाश दी, उदे प्रकाश विच सिर्फ आत्मिक प्रेम सपना दा ही प्रवेश है, जिथे के ए गुण हुंदे हन सदा आनंद सुख प्यार प्रेम रस महारस सच्चा रंग चाओ खेड़ा। पर त्रैगुणी माइकी मंडल विच असी कई पद्धर उत्ते अनेका कानूना दे अधीन जीवन बतीत करते हाँ, उत्थे एका है इत्थे दोए दा वर्तारा है। अते असी अपनी होमे ते स्याणप द्वारा कर्म करते हुए अनेक तरह के बंधना विच फसे हुए हाँ। ये त्रैगुणी माइकी मंडल विच असी केड़े केड़े बंधना दे विच फसे जीवन बतीत करते हाँ, पहला तो केंद्रीय सरकारी कानून साढ़े ते लागू होंदे हन, फिर सूबाई कानून हन, नगर पालिका दे कानून हन, ग्राम पंचायतां दे कानून हन, फिर इखलाकी रवायतां साढ़े मॉरल ऑब्लीगेशन्स हन, भाईचारक रिवाज धार्मिक मर्यादा कर्मकांडां दे नियम वहमां दे बन्नन संस्कारां दे बंधन पंजां दी गुलामी कुसंगत दी गुलामी कई तरह के बंधना ते गुलामी दे विच असी जीवन बतीत करते हाँ। ये बाहरले जीवन बंधन इलाही हुक्म नू ना बुझण ना मनण का ही नतीजा हैं, इस करके सानू ये भुगतने पैंदे हैं, जिदे विच असी देखते हाँ सिर्फ इंसानी जून ही फसी हुई है ते दुख भोगती है, बाकी 84 लाख जूना उत्ते ये सारे बंधन लागू नहीं होंगे। होमे विच जियो बंध है नाम ना वसे मन आए, करम धर्म सब बंधना पाप पुन संबंध, ममता मोह सो बंधना पुत्र कलसर सो तंद। ए कुटुंब सब जी के बंधन पाई, परम पुला संसारा ते आप बंधायो।

खेत लड़े उस दी ही बेड़ी तोड़ चढ़े जो रोक पिया तो रुक जावन उस जादे पानी खड़े खड़े तपदे थल विच।

गोविंद सिंह जवान के साहब कलगीधर पातशाह ने खालसा पंथ साजन वास्ते जुल्म दा टाकरा करन वास्ते जुल्म नूं मिटाउण वास्ते खालसा पंथ साजिया। 1699 ईस्वी नूं विसाखी वाले दिन दी संगरांद नूं स्टेज ते आके साहब कलगीधर पातशाह ने म्यान विचों चमकदी हुई तलवार कढ के ते इक सिर दे मंग कीती ते शायर की आखदा जी

ने बन सिंह सजाए, अमृत का बाटा छकाया, अमृत पिलाया। पहला भाई दया सिंह, दूजे भाई धर्म सिंह, तीजे भाई हिम्मत सिंह, चौथे भाई मोहकम सिंह, पंजवें भाई साहब सिंह। इस तरह खालसा पंथ की साजना की साहब गिल की दरबार शाह ने। आओ सिक्खी तलवार विचों, खंडे की धार विचों खालसा पंथ पैदा होया।

गुरु रामदास जी की पावन नगरी जिसकी ज़ियारत करन विच सब धर्मां दे लोग फखर समझते हैं, जिस दे पाक सरोवर विच नहा के कागां तो हंस ते कोड़ी कंचन हो जाते हैं, रहमतां दे सोमे बख्शां दे भंडार सोधी सुल्तान जिस दे दर तो अमीर ते गरीब सब झोलियां भरा के मुड़ते हैं, कोई भी निराशा नहीं जाता। उस दर की शोभा श्री कुलदीप माणक भी पेश कर रहे हैं।

0: ऐसी जीव स्त्री परिपूर्ण परमात्मा नू प्यारी लगती है जिहड़ी अपने हिरदे विच अब हिरदे विच प्रभु प्यार नू रखती है परमात्मा दे प्यार नू रखती है। गुण ते सारे महान ने अमर ने सदीवी ने पर प्यार सिरमौर है। ये मेरू मणक है माला दा ये सिरमौर मणक है। मन रे क्यों छूटे बिन पता ऐ बंदे किवें प्यार तो बिना बंधना तो छूटेगा। कहिंदे ने तरह तरह दियां साग सब्जियां बनाइए पर सिर्फ नमक ना पाइए बाकी सब कुछ पाइए तो सब बेसवादा। इस वास्ते गुरमत विच नियंग सिंह लूण नूं सर्वरस कहिंदे ने। सारियां साग सब्जियां नूं रस देण वाला होर अनेकां पदार्थ बनाइए मिष्टान लेकिन उस विच मिठा शक्कर पाना भुल जाइए या पाइए ही ना तो जितने ओ पदार्थ ने स्वाद खो गया भावें बड़ी मेहनत भावें दूध है भावें आटा है भावें मैदा है भावें घ्यो है सारे पदार्थ सम्मिलित करके पदार्थ बने ने पर शक्कर नहीं पाई मिठा नहीं पाया तो वो स्वाद नहीं आया। भावें सारे गुण कट्ठे हो जान पर जिन्ने चिर तक प्यार नहीं है प्रेम नहीं है वो आनंद नहीं बनता वो खेड़ा नहीं बनता वो खुशी नहीं बनती। मिठा सारे पदार्थां नूं महान बना देंदा है जैसे नमक सारियां सब्जियां ते दालां नूं स्वादी बना देंदा है प्यार सारे गुणां नूं महान बना देंदा है। इस वास्ते दुनिया भर दे महापुरुषां ने प्यार नूं अमर अवस्था आख्या और सब तो उच्ची अवस्था आख्या है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते अपना फैसला सुनांदे ने साच कहो सुन ले लो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। तो इस महीने दा उपदेश करदे होया धन गुरु नानक देव जी महाराज प्रमाण करदे ने नानक साधन नाए प्यारी। इस साधना करन वाली जीव स्त्री परमात्मा नू प्यारी लगे है ते इक साधना। धर्म फोके ज्ञान ते नहीं खड़ा धर्म फोके तर्क ते नहीं खड़ा और धर्म फोके दिखावे ते नहीं खड़ा धर्म साधना ते खड़ा है। और साधना लई तर्क नहीं चाहिदा साधना लई तपस्या चाहिए मेहनत चाहिए। इस वास्ते सतगुरां दी बाणी दा फैसला कि जो प्राणी गोविंद ध्यावे पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। असी देख रहे हैं अनपढ़ बंदा इंजीनियर नहीं बन सकता लॉयर वकील नहीं बन सकता अनपढ़ मनुख साइंटिस्ट भी नहीं बन सकेगा। भौतिक विद्या लई पढ़ा लिखा होना बड़ा लाजमी है लेकिन धर्म परमात्मा लई एक सिर्फ एक पुकार चाहिए है साधना चाहिए है। एक बच्चे नो अपने मां बाप नाल जुड़न लई किसे तर्क दी लोड़ नहीं किसे फोकियां दलीलां दी लोड़ नहीं बस वो बां पुकारे बां पसारे मां आखे तो मां मां दे कहंदे आई मां गलवकड़ी च ले लेंदी ओनू चुक लेंदी है ओनू कुछड़ विच ले लेंदी है। इत्थे ते सिर्फ प्रभु नूं पुकारना है फरियाद करनी है तो ये फरियाद करनी है ये पुकारना एक साधना है। तो जब कोई पूर्ण तौर पर उसको पुकार रहा है पुकार खाली नहीं जाती व्यर्थ नहीं जाती। और ये भी हकीकत है कि आम जगत विच जैसे जैसे कोई मनुख वड्डा हुंदा जाएगा उसका दरवाजा बंद हुंदा जाएगा पर प्रभु का दरवाजा कदी बंद भी नहीं आउंदा। जैंदर आवत जाते हो हटके नाही कोए सो दर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा हो। उसके दर ते हर वक्त पुकार की जा सकती है और उसके दर ते पुकार हर वक्त सुनी जाती है। तो साहिब कहंदे ने जो साधना करने वाली जीव स्त्री है जैसी साधना विच लीन आउंदी है परमात्मा नूं प्यारी लगती है वो अपना प्यार भरिया हिरदा परमात्मा दे अगों रखदी है और इस तरह परमात्मा उसनू अपने विच लीन कर लैंदा है। मंगर दे महीने दा गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी द्वारा ए महान उपदेश ए महीना सुख ते सुहावना बतीत होवे बस साधना चाहीदी है जप चाहीदा है।
1: भूख तो खार ना व्यापई

आवत की नाही मन तन वसे मुखे मन तन रवरे जग जीवन गुर सब दी रंग माई अंडज जेरत से तज उत्बुज घट घट जोत समाणी दर्शन

0: तुखारी बारह मां धन गुरु नानक देव जी महाराज का अमर वचन। आप कहते ने तुखार बर्फ कक्कर पाला पै रहा है पोह दे महीने विच वण तृण रस होके जंगल विच बनस्पति दे घास सुकने शुरू हो गए उपर बर्फ पै गई बर्फ नाल भी बनस्पति सड़ दिए गल दिए। ऐसा ही नहीं कि अत दी गर्मी जद लू चले ते वनस्पति सुक दिए सड़ दिए अत दी बर्फ पै जाए तामी सुक दिए ते सड़ दिए दोहां हालतां विच समान अवस्था चाहिए दिए बनस्पति नो खिड़न लई हो बहो मन दी भी यही हालत है अत दी ठंड अत दा आलस मनुख नो सुका के रख देंदा है जीवन दे हर पासों गति रोक के रख देंदा है और उन्नत होना उसले कठिन हो जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज इस देते बहुत सुंदर उदाहरण देंदे ने कि जितने तिनके ने घास फूस वनस्पति इते सुकनी शुरू हो गई क्योंकि बर्फ पै गई ते बर्फ नाल उना दा पुंगरना वधना फुलना रुक गया। अत दी ठंड वाकई इतना आलसी बना देंदी है कि उस लई वधना फुलना भजना दौड़ना कुछ करना कि सारे दा सारा रुक जांदा है। साहिब कहिंदे ने पोह दे महीने दा ए प्रताप पोह दे महीने दा ए असर पोख तुखार पड़े वण तृण रस होखे आवत की नाही मन तन वसे मुखे। जीव कावन जे किधरे इस ढंग दी अरदास करे हे परमात्मा तू आमदा क्यों नहीं तेरी आमद दी कोई निग मेरा आलस दूर करे मेरे च फुर्तीलापन पैदा करे मैं बेपरवाह होवां मैं अमृत वेले उठ सका मैं गुणा नु संग्रह कर सका तू आमदा क्यों नहीं आवत की नाही मन तन वसे मुख है तू मन दे च वस तन दे च वस मुख दे च वस इस निग दे नाल पोक दे महीने दी जो ए शीत लहर है ए जो कक्कर ते पाला है ए नहीं व्यापेगा। जो ख्याल माज राग विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिता है तुखारी राग विच पहले ही पहले पातशाह ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बख्शिश कीता होया है। वाकई जद मन विच ओ वसदा है तो तन विच भी वस जांदा है जैसे मन विच उसकी याद वसदी है तन सेवा करन लग पैंदा है आलस दूर हो जांदा है और जैसे उसके गुण मन नूं प्रभावित करदे ने रसना वाहेगुरु वाहेगुरु जपन लग पैंदी अभ्यासी दी ए पहचान है कि उदा तन सेवा दे चलीन है उदा मन याद दे चलीन है उदी रसना जाप दे चलीन है बस यही पहचान है। रसना जप दी जाए तन सेवा करदा जाए और मन उसकी याद दे जो है लीन होवे तो साहब ऐसा पै फरमान कर देने आवत की नाही मन तन वसे ने ए परिपूर्ण परमात्मा तू आउंदा क्यों नहीं मन विच वस तन विच वस मुख विच वस ताकि इस वसण दे नाल मेनू निगदी प्राप्ति होवे और ए आलस जो कक्कर करके है बर्फ करके है शीत लहर करके है ए दूर होवे। समान अवस्था ही दरअसल सुखदाई है अति सर्वत्र विवर्जते। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक अति हों धक्का खाए जीवन दे जिस पख दे ची जदों कदी मनुख अत करदा है धक्के ही खांदा है। रस आनंद समान अवस्था दे च है मद दे च है सहज दे च है तो साहिब ऐसा ही जो है इत्थे फरमान पे कर देन अत दी ठंड अत दा आलस किवें दूर होवे ये शीत लहर उद्यम जो है करन नू रोकदी पई है ये बर्फ जीवन दी सारी हरकत नू रोकी बैठी है और बनस्पति दा फुलना वधना हरा होना औखा हुंदा जा रहा है जीवन दी हरियावली दा पैदा करना कठिन हुंदा जा रहा है तो की करिए। साहिब कहिंदे ने इंज फरियाद कर हे प्रभु तू मेरे मन विच क्यों नहीं वसता, तू मेरे तन विच क्यों नहीं वसता, तू मेरे मुख विच क्यों नहीं वसता। इस तरह की जिहड़ी मंग ते चाहत है अगर कोई उस ठंडे महीने विच भी करे तो उसका मुख उच्चारण करन लग पवेगा, मन विच प्रभु वस जाएगा, तन सेवा विच लीन हो जाएगा। इस तरह की निघ की प्राप्ति होंदिया ही पोह दे महीने की जो ये रोक है उस लई ए रोक साबित नहीं होगी। आवत की नाही मन तन वसे मुखे, मन तन रव रहा जग जीवन गुर सबदी रंग माणी। साहिब कहिंदे ने गुरु दे शब्द दे मिलाप दे द्वारा जीव स्त्री मन ते तन विच परिपूर्ण परमात्मा नूं वसा के रंग माण दी है। ओ जो जगत दा जीवन है किसे एक दा जीवन नहीं। आम जगत विच कहावत है फलाना ते मेरा जीवन है, फलाना ते मेरी जान है, कहावत है, सच नहीं है, हकीकत नहीं है। चलो जे किधरे मन भी लईए फलाना ते मेरी जान है, पर सिर्फ उसकी जान हो सकता है, जगत दी नहीं, सारे संसार दी नहीं, सारी मखलूक दी नहीं। अवल ते कोई किसी दी जान नहीं। बड़ा आज की मिजाजी उस दिन ए परचल तवाक बे मेरी जान फलाना ते मेरी जान है, मेरे प्राण है, नहीं। जगत दा जीवन, जगत दी जान, जगत दे प्राण केवल परिपूर्ण परमात्मा है। सारियां दी ओ जिंद जान है, सारियां दी ओ प्राण है। पर कमाल दी गल जो सारियां दी जान है उसनू कोई भी ऐसा घट ही आखदा है, हे प्रभु तू मेरे प्राण है, तू मेरी जान है। लेकिन उन्हां नू ये कहिंदा फिरदा है ए मेरी जान, ए मेरी जान, जबकि उसकी जान है ही नहीं, उसके प्राण तो है ही नहीं। तो साहिब फरमान पे करदे ने ओ जो जगत दा जीवन है गुरु शब्द दे जाप द्वारा जगत दे जीवन दा जीव रूपी स्त्री आनंद माणदी है और उसके मन ते तन विच उसका बकायदा छाप रहिंदी है, उसके मन दे उते बकायदा उस परिपूर्ण परमात्मा दा प्रभाव रहिंदा है। ऐसी उसकी तर्ज जिंदगी बन जाती है। अंडज जेरज सेतज उद्भुज घट घट जोत समान, चार खानियां ने जिथों जीवन उत्पन्न होता है। सब तो वड्डी खान है अंडे, दूजी खान है जेर पेट, तीजी खान है उद्भुज और चौथी है सेतज पसीने तो पैदा होना। कि जो जीवन असी पृथ्वी ते देख रहे हैं ये चार खानियां द्वारा ही जगत दे जो है प्रचलित होता है। जीव इना दे राही बाहर आंदे ने, कुछ अंडिया राही, कुछ पेट राही, कुछ पसीने ते मैल दे राही ते कुछ धरती दे चों उत्पन्न होंदी है, जैसे कि वनस्पति। अंडज जेरज सेतज उत्पुज घट घट जोत समाणी, शब्द का रंग माणदिया माणदिया जीव रूपी स्त्री नूं समझ पै जांदी है, हे परिपूर्ण परमात्मा अंडिया दे जो जीवन है उस दे भी तेरा ही जीवन है, पेट दे अंदर जो जीवन है उस दे अंदर भी तेरा ही जीवन है, पसीने ते मैल दे जो जीवन बनता है उस दे भी तेरा ही जीवन है, और वनस्पति दे भी तू रमिया होया है। चारे खाणिया दे विच हे परिपूर्ण परमात्मा तेरी ही लीनता है। अंडज जेरज सेतज उद्भुज घट घट जोत समाणी, दर्शन देव दयापत दाते गत पाव मत दे। इस तरह इस ठंडे महीने जिस देश भयंकर कक्कर बर्फ ते शीत लहर चल रही है, अगर जीव रूपी इस तरह की अरदास करे दर्शन देहो दयापत दाते गत पावो मत दे, हे परिपूर्ण परमात्मा तू मत दे ऐसी कि तेनू सोचा ते तेरे दर्शन दी तांग अंदर पैदा होवे, मैं ऐसी चाहत अपनी मत दे अंदर पैदा कर सका, हे प्रभु ऐसी मत दे, ऐसी सोचनी दे ताकि ए महीना मेरा सुखां दा बतीत होवे। परिपूर्ण परमात्मा हे दया दे घर, हे दया दे सागर, तू रहमत कर, बख्शिश कर, ऐसी मत दे मैं तेनु सोचा, मैं तेनु याद करा, मैं तेरी मंग करा, मैं तेरे दर्शना दी लोच दे जिंदगी बतीत करा, नानक रंग रवे रस रसिया, हरसों प्रीत स्नेहो। पोख दे महीने विच जीव रूपी स्त्री इसे ही रंग विच रंगी जाए तो सारा महीना आनंदमयी बतीत होंदा है।
1: ਕੇਲਬੂ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

जोन गर्भ नहीं आवे। जेड़े जेड़े गुरमुख प्यारे एक अकाल पुरख दे लड़ लग गए, एक अकाल पुरख नु ही सनमुख हाजर नाजर समझ के पूजया सेव्या आराध्या अपने अंग संग समझ। एक कहिए अकाल पुरख वाहिगुरु, दिशा कहिए उदे वालो दी तरफ, और सारिया दिशा छड़ के सारे धड़े सारिया शक्तियां छड़ के एक जो अकाल पुरख वाहिगुरु है। भगत फरीद जी महाराज जिन्हां ने शकरगंज गुरबाणी विच जिन्हां दी बाणी दर्ज है उन्हां दी माता ने पढ़ने पाया मकतब

कोठरे में कोठरी परम कोठी विचार। अगली पंक्ति में सतगुरु सच्चे पातशाह कबीर साहब प्रश्न करते हैं, उस परमात्मा ने कबीर नु बख्शिश की है ये पंक्ति करन दी। नाम रस सतगुरु ने दिता है, ले वो बस तुम्हार। अगे कहते ने कबीर दी संसार को कबीर साहब ने सिमरन किया है, अपना जीवन बनाया है, एक रुतबा बनाया है। कहते ने कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक पार। तो प्यारी सत्संग जीओ, जे होर अन रस ने ते उते नाम कदे नहीं टिक सकदा। जिस इंसान दे कोल ए रस ने उस ओदे पल्ले विच भी कदे नाम ठहर नहीं सकदा। तो आज का शब्द सतगुरु सच्चे पातशाह बख्श करते ने, एहो हर रस करमी पाईए। कर्म कर्मा दे नाल कर्मा उपर निबड़े जे लोचे सब कोए। कहिंदे ने कर्मा दे नाल मिलदा हुंदा ते सब कुछ लै लैंदा, पर कर्म इथे आके बनते ने गुरु की हजूरी दे विच आके। कहिंदे ने कहे नानक होर अन रस सब विसरे जां हर वत्ते मन आए।

0: सज्जन सच्चा
1: पातशाह
0: जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ तना सोरठ महला पंजवां कर दूजा मात गर्भ मह अपन सिमरन दे तह तुम रखन हारी पावक सागर असा लहर मह तारहु तारण हारी मात गर्भ मह अपन सिमरन दे तह तुम रखन हारी पावक सागर अथाह लहर मह तारहु तारण हारी माधव तू ठाकुर सिर मोरा इहां उहां तुहारो तोरा कीते कौ मेरा सम्मान करण हार तृण जानै तू दाता मांगन कौ सगली दान दे प्रभ पानै खिन मह अबर खिनै मह अबरा अचरज चलत तुम्हारे रूढ़ो गूढ़ो गहर गंभीर पूछो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो ताओ सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी साध संग जो तुम्हें मिलायो ताओ सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ जप जी साहिब एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सै पानी गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न हो गई जे सोची लख वार चुपै चुप न हो गई जे लाई रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस स्याणप लख हो है तक न चलै नाल किब सत्यारा होई है किब कूड़ै चुपै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल हुक्म होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्म होवन जी हुक्म लबड़ियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक न हुक्म बख्शी सुख हुक्मी सदा पवाई है हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्म जे बुझे तो हम कहे न कोई गावे को तारण होवे किसै तारण गावे को दात जाने निशान गावे को गुण बढ़ियाईया चार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साज करे तन फेही गावे को जी लै फिर दे गावै को जपद सदूर गावै को विखहा द्रह दूर कथना कथिना आवै तोट कथ कथ कथी गोटी गोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाही जुगा जुगंतर खाही खाए हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विसे वे परवाह साचा साहब साच नाए पाख्य पावा पारू आखे मंगे दे दात करी दतारू फिर के अगे रखी है जित दिसै दरबार मोह के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाऊ बड़ियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सच्यार थाप्या ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जन सेव्या तिन पाया मान नानक गावी है गुणी निदान गावी है सुनिए मन रखिए पाऊ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहया समाई गुरीसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जेहां जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरायक दे बजाई सबना जिया गायक दाता सो मैं विस्तर ना जाई तीर्थ नावा जे तिस भावा बिन भाण के नाई करी जे तीसर ठो पाई वेखा बिन करमा के मिल लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारी आर जा होर दसोनी होए नवा खंडा बिच जानी है नाल चले सब कोए चंगा ना और काए कहे जस कीरत जगले जे तैसो नजर ना आवई ता बात ना पूछे के किठांदर कीट कर दोषी दोष करे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत है गुण में

अंतर्गत तीर्थ मन नाओ। सब गुण तेरे मन आई कोय, बिन गुण कीते भगत न होए। सो आस्याद बाणी बरमाओ, सत सुहावन सदा मन जाओ। कवण सुवेला वक्त कवण, कवण थित कवण वार, कवण सिरुति मां कवण जिथो आकार। वेल न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण, वक्त न पायो कादियां जे लिखण ले कुराण। थित वार न जोगी जाने रुत मां न कोई, जा करता सिर ठीक साजे आपे जाने सोई। किब कर आखा किब सलाही, क्यों वरने किब जाना। नानक आखण सब को आख, एक दू एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा कहो वै। नानक जे कहो आपा जाने अग गया ना सोहै। पातला पाताल लख आकाशा आकाश, उड़क उड़क पाल थके वीर खै निकवात। सहस अठारह कहन कतेबा सलू एक धात, लेखा हुए तो लिखी है लेखा हुए विनाश। नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप। सालाही सालाह इति सुरत न पाइया, नदियां आतै वह पवहें। समुद न जानी है समुद सा सुल्तान, गिरह उसे ती मल तन। कीड़ी तुल न हो बनी जे तस्मन होना विसरै। अंत न शिवती करण न अंत, अंत न करण देण न अंत। अंत न वेखण सुनन न अंत, अंत न जापै गया मन मंत। अंत न जापै किता कारु, अंत न जापै पारा वार। अंत कारण किते बिल लाही, ताकि अंत न पाए जाहे। अंत न जाने कोई, बहुता कही है बहुता होए। वड्डा साहेब ऊचा थाओ, ऊचे उपर ऊचा नाओ। एवड ऊचा हो वै कोय, दस ऊचे कहो जाने सोए। जे बड़े आप जाने आप, आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखया ना जाई, वड्डा दाता तिल ना तमाए। केते मंगे जोद पार, केत्या गणत नहीं बिचार। केते खबद टैम बेकार, केते लै लै मुकर पाहे। केते मूरखाही खाए, केत्या दुख बहु सदमार। ए पेदात तेरी दातार, बंद खलासी पाणै होए। ओर आख न सकै कोए, जे को खाए का आखण पाए। ओ जाने जे तिया मोह खाए, आपे जाने आपे दे। आख से पे कई के, जिसनो बख्शे शिव सलाह। नानक पातशाही पातशाह, अमुल गुण अमुल व्यापार। अमुल व्यापारी अमुल भंडार, मुला वह मुल लै जाहे। अमुल पाए मुला समाहे, अमुल धर्म मुल दीवान। अमुल तुल मुल प्रवान, अमुल बख्शीस अमुल निशान। अमुल कर्म अमुल फरमान, मुलो मुला खन जाई। आख आख रहे लिबलाई, आख है वेद पाठ पुराण। आख है पढ़े करे बखयाण, आख है ब्रह्म आख अम्ब। आख है गोपी तै गोविंद, आख है ईश्वर आख सिद्ध। आख है गेते गीते बुद्ध, आख है दानव आख देव। आख है सुर नर मुंजन सेव, केते आख आखण पाहे। केते कह कह उठ उठ जाहे, ते किते और करे ता आख न सकै कई के। जे बड़ भावै ते बड़ होए, नानक जाने सचा सोए। जे को आख मूल बिगाड़, ता लिखी असर गवार अंगवार। सोदार के हास कर के हा, जितवै सर्व संभाले। वाजे नाद अनेक संखा, केते वावण हारे। केते राग परिसों कही अन, केते गा बणहारी। गावे तो न पौन पाणी वै संतर, गावे राजा धर्म नारी।

पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महात दिवस रात दाई दाया खिल सगल जगत संग आईया बुर आईया वाच धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मुसकत काल नानक दे मुख उजले केती छुट्टी नाल।

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਵ ਮਾਨੇ ਸਮਾਜ ਦਿਨ ਦਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਪੇਖੀਏ ਪੇਵੇ ਨਮੋ ਕਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਉਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਰ ਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਾਧਿ ਸਰੂਪੇ ਬ੍ਰਭੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਸਮਾਧਿ ਬਭੂਤੇ ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾ ਆਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰੰਗ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਯੋਗ ਯੋਗੇਸ਼ ਵਰੰਗ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰੰਗ ਪਰਮ ਹਿਰਦੇ ਨਮੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਾਣੇ ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਮਾਣੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਅਭੇਖੀਏ ਪਰਮੇ ਅਭੋਗੀਏ ਭੁਗਤੇ ਨਮੋ ਯੋਗ ਯੋਗੇਸ਼ ਵਰੰਗ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤਾ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵ ਸੋ ਧਰਮੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਨਮੋ ਭੂਪ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ ਨਮੋ ਮਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ਨਮਾ ਸੰਗ ਸਨਾਨੇ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ ਨਮੋ ਯੰਤਰ ਯੰਤਰੰ ਨਮੋ ਇਸ਼ਟੇ ਇਸ਼ਟੇ ਨਮੋ ਦੰਤਰ ਦੰਤਰੰ ਸਦਾ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਰਵੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਅਨੂਪੇ ਰੂਪੇ ਸਮਾਧ ਤੁਲਣੇ ਵਾਸੀ ਅਨੂਪੇ ਰੂਪੇ ਸਮਾਧ ਤੁਲਣੇ ਵਾਸੀ ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬਿਰਧ ਕਰਤਾ ਅਧੂਰ ਦਰਦੰਗਾ ਗੰਗੋ ਘਰਤਾ ਪਰੰ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੰ ਬ੍ਰੋਜਪਾਲੰ ਸਦਾ ਸਰਬਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾਤਾ ਦਿਆਲੰ ਅਸ਼ੇਦੀ ਅਭੇਦੀ ਅਨਾਮੰ ਅਕਾਮੰ ਸਮਸਤ ਉਪਰਾਜੀ ਸਮਸਤ ਅਸਤਾਮੰ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਜਾ ਜਰੀ ਸੰਭ ਜਲੇ ਹੈ ਸਲੇ ਹੈ ਪੀਤਾ ਪੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਜੂਆ ਦੇ ਸਭੇ ਸਹਿ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਭ ਅਗਾਧੇ ਅਬਾਧੇ ਆਨੰਦੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਮਾਨੇ ਸਮਾਧ ਤਿੰਨ ਦਾਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੁੰਗ ਨਰਨਾਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੁੰਗ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੁੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੁੰਗ ਅਪੰਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੁੰਗ ਅਕਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੁੰਗ ਅਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਦੇਸੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪੇਸੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਸਾਜ ਸਾਜੇ ਨਮੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੇ ਨਮੋ ਮਹਾ ਮਾਹੀ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤੇ ਨਮੋ ਰੁਖ ਰੁਖੇ ਨਮੋ ਸੋਖ ਸੋਖੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਜੀਤੰ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪੀਤੰ ਨਮੋ ਸਰਵ ਗਿਆਨੰ ਨਮੋ ਪਰਮਤਾਨੰ ਨਮੋ ਸਰਵ ਮੰਤਰੰ ਨਮੋ ਸਰਵ ਜਾਂਤਰੰ ਨਮੋ ਸਰਵ ਦ੍ਰਿਸੰ ਨਮੋ ਸਰਵ ਗ੍ਰਿਸੰ ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੰਗੇ ਦਰਭੰਗੀ ਅਨੰਗੇ ਨਮੋ ਜੀਵ ਜੀਵੰ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਅਖਿਜੇ ਅਭਿਜੇ ਸਮਾਧ ਤੰਗ ਪ੍ਰਸਿਜੇ ਗਿਰਪਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਕੋ ਕਰਮੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸਦਾ ਸਰਵਦਾ ਹਰਿ ਦਿਸ ਦਿੰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਚਰਪਟ ਛੰਦ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰਮੇ ਅਖਲ ਜੋਗੇ ਅਚਲ ਭੋਗੇ ਅਚਲ ਰਾਜੇ ਅਟਲ ਸਾਜੇ ਅਖਲ ਧਰਮੰ ਲਾ ਕਰਮੰ ਸਰਵੰ ਦਾਤਾ ਸਰਵੰ ਗਿਆਤਾ ਸਰਵੰ ਪਾਨੇ ਸਰਵੰ ਮਾਨੇ ਸਰਵੰ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਵੰ ਤ੍ਰਾਣੰ ਸਰਵੰ ਭੁਗਤਾ ਸਰਵੰ ਜੁਗਤਾ ਸਰਵੰ ਦੇਵੰ ਸਰਵੰ ਪੇਵੰ ਸਰਵੰ ਕਾਲੇ ਸਰਵੰ ਪਾਲੇ ਰੂਆਲ ਛੰਦ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦ ਰੂਪ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਅਜੋਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੁ ਸਰਵ ਮੰਤਰ ਮਾਨ ਦੇਵਾ ਪੇਵਾਦ ਉਧਾਰੁ ਸਰਵ ਬਾਲਕ ਸਰਵ ਕਾਲਕੋ ਸਰਵ ਗੋਪਨ ਕਾਲ ਜਤਰ ਤਤਰ ਵਿਰਾਜ ਹੀ ਅਵਧੂਤ ਰੂਪ ਰਸਾਲੁ ਨਾਮ ਠਾਮ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾਕਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਰੇਖੋ ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਧਾਰ ਮੂਰਤ ਜੋ ਨਾਦ ਸੇਖ ਦੇਸ ਔਰ ਨਾ ਬੇਸ ਜਾਕਰ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਾ ਰਾਗ ਜਤਰ ਤਤਰ ਦੇਸਾ ਬੇਸਾ ਹੋਏ ਫੈਲੇ ਅਨ ਰਾਗ ਨਾਮ ਕਾਮਹੀਨ ਪੇਵਤਾਮੂ ਨਹ ਜਾਹੀ ਸਰਵਮਾਨ ਸਰਵਧਰਮਾਨ ਸਦੈਵਮਾਨ ਤਦਾਹੀ ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਅਖਿਲ ਖਿਲ ਅਖਿਲ ਖਿਲ ਅਨੰਤ ਕੋ ਬਰੇਕ ਦੇਵ ਪੇਵ ਨਾ ਜਾਨੀ ਜੇ ਬੇਦੌਰ ਕਦੇਵ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੋ ਜਾਨੀ ਕਹਿ ਜੇ ਬਹੁ ਦਾਤ ਮਾਤ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾ ਕਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਹੀਨ ਛਤਰ ਚਕਰ ਚਕਰ ਬਕਰ ਬੇਰਾ ਚਦਰ ਜਾ ਕੋ ਮਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨ ਲੋਕ ਚੌਦਾਂ ਕੇ ਬਿਖੇ ਜਗ ਜਾਪੀ ਜੇ ਜਾਪ ਆਦਿ ਦੇਵ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਥਪ ਸਭਜੇ ਥਾਪੁ ਪਰਮ ਰੂਪ ਉਪਨੀਤ ਮੂਰਤ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੁ ਸਰਵ ਵਿਸਵ ਰਚਿਓ ਸੁਯੰ ਭਉ ਗਣ ਭੰਜਨਹਾਰ ਕਾਲਹੀਨ ਕਲਾ ਸੰਯੋਗਤਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇਸ ਧਰਮ ਧਾਮ ਸੁ ਪਰਮ ਰਹਿਤ ਅਭੂਤ ਲਖ ਅਭੇਸ ਅੰਗ ਰਾਗ ਨ ਰੰਗ ਜਾ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨ ਨਾਮ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਦੁਲਟ ਭੰਜਨ ਮੁਕਤਦਾਇਕ ਕਾਮ ਆਪ ਰੂਪ ਅਮੀ ਕਾਨ ਉਸਤਤ ਏਕ ਪੁਰਖ ਵਧੂਤ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਸਰਵ ਭੰਜਨ ਆਦਿ ਰੂਪ ਅਸੂਤ ਅੰਗਹੀਨ ਭੰਗ ਨਾਤਮ ਇਕ ਪੁਰਖ ਪਾਰ ਸਰਬ ਲਾਇਕ ਸਰਬ ਕਾਇਕ ਸਰਬ ਕੋ ਬ੍ਰਤ ਪਾਰ ਸਰਬ ਗੰਤਾ ਸਰਬ ਹੰਤਾ ਸਰਬ ਦੇ ਅਨਭੇਖ ਸਰਬ ਸਾਸਤ ਨਾ ਜਾਨੀ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹਰ ਰੇਖ ਪਰਮ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾ ਕਹੇ ਨੇਤ ਭਾਗਤ ਨਿਤ ਕੋਟ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਸਤ੍ਰ ਨਾ ਆਵਈ ਬਹੁ ਚਿਤ ਮਦ ਪਾਰ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣਗਾਨ ਉਧਾਰ ਮਹਿਮਾ ਪਾਰ ਆਸਨ ਭੰਗ ਉਪਮਾਨ ਅੰਗ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਰਦਨ ਅਨਾਸ਼ ਆਜਨ ਬਾਹ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਹ
राजान राज पानन पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंगन रंग कालन काल अन भूत अंग पापंग गत मित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निरपय ने काम आत दुत पर चांड मित गत अखंड अलिष्ट कर्म अदृश धर्म सर्व प्रणाड्या आन दंड बढ़े चाचरी छंद दव प्रसाद गोविंदे मुकंदे अधारिय पारे हरियंग करियंग निरनामे कामे भजंग प्रयाद छंद चतर चकर करता चतर चकर हरता चतर चकर दाने चतर चकर जाने चतर चकर वर्ती चतर चकर भरती चतर चकर पाले चतर चकर काले चतर चकर पासे चतर चकर वासे चतर चकर माने आए चतर चकर दाने आए चाचरी छंद ना सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काई अजन्मंग अजाई न चित्र न मित्र पर पवित्र प्रतिशा दिशा दृशा कृषय भगवती छंद दव प्रसाद कथ दे क्या सच देश है क्या बिज बेस है क्या गंज कर्म है क्या पंज परम है क्या बिज लोक है क्या दत शोक है क्या अवधूत वर्ण है क्या भूत करण है क्या राज प्रभाएं के धर्म तुजाए क्या शोक वर्ण है क्या सर्वा भरण है क्या जगत अंग्रति है क्या सतरंग क्षत्रिय है क्या ब्राह्मण स्वरूप है क्या अनुपान रूप है क्या आदो देव है क्या भेव है के चतरंग विहीन है के कह दीना है के रोजी रजा कर ही मैं रहा कह के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के अबुल गुनाह के शाह निशाह के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज करीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग धली है के सर्वत्र माने आएंगे सर्वत्र दाने आएंगे सर्वत्र गाँवन आएंगे सर्वत्र भावन आएंगे सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र भाव के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र बाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जापे है के सर्वत्र थापे है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग लीम है के परम भीम है के आकल लाम है के साहब कलाम है के उदन बजू है तमाम दरजू है मेसर सलाम है श्री कदम बदाम है गनी वल सकसता गरीब वल बरासता है बलंदल मकान है जमीन वल जमान है तमीज वल तमाम है रूज वल नदान है हरी फल जी मह जाग जकीना है नेक वल तरंग है भेद है पंग है जी जल नवाज है गनी वल खराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त बभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्व साज है समाज तल सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है गाध अनूप है वंगाध रूप है नाद स्वरूप है नंगी है नामे त्रिपंगी दृ काम त्रिवर्गंग त्रिभाधे गंजे गाधे सुगंग सर्वभागे सुसर्वान रागे त्रिपुग स्वरूप है सजय सूत है नरकंग प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजोगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रजोगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है नंग है भेख लेख है परम कर्म है नाद जुगाद है अजय है भय भूत है दूत है नास है उदास है दंद है बंद है भगत है भरगत है नास है प्रकाश है नजंत है सनंत है अलिख है दिख है अलिख है भेख टाह गाय असंभ है गम है नील नाद है नित सनत जात जात है चरपुट शांत प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रसावल शांद दव प्रसाद नमो नरक नाशे सदा भंग प्रकाशे अनंगंग स्वरूपे अभंगंग भूते ब्रह्मासंग ब्रह्माथे सदा सर्वसाधे अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न भूमि पुत्र न सत्र न मित्र न दाते न माते न जाते न पाते
नरसाकं श्री कामितमेक है सदैव प्रवाह जय जय भगवती शांत प्रसाद हेजार जूर है कि हाजर हजूर है हमेशा सलाम है समाज रगलाम है कि साहब दिमाग है कि उस राग है कि कामल करीम है कि राज करीम है के रोजी दहन दें कि राज कर करीमल कमाल है कि उस जमाल है करीमल खराज है करीमल निवाज है हरी फुल सिकान है रासल पकान है कलंक प्रणास है समाजतुल निवास है कंजल कनीम है रजाय करीम है समाजतुल जवाह के साहब गराय के नरक प्रणास है बैतुल निवास है के सर्वल गवान है मे सदर बन है तमाम मुल्क मीज है समाजतुल अजीज है परंग परमीश है समाजतुल अधीश है देसल अलीख है मे सल बेख है जमीन उल जमा है मी गुल माह है करीमल कमाल है गजरो जमाल है गजरंग प्रकाश है मितो सुभाष है गजव स्वरूप है कि मितो भूत है के मितो बसाए के आत्म प्रवाह है कै चलंग नंग है के मितो भंग है मद पार शांत प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मदाम हर भर अगंजो हर नर पर पांजो गण गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड भर नर अमंड गण पवनाश मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल धन मदाम अंश जे अंग आसन भंग उपमा पार कदमित दार जल थल मांड दिस विदय पांड जल थल महंत दिस दिस बेअंत

Ajan Baha Shahan Shah Rajan Raju Panan Pan Divan Divu Puma Mahan Ajan Baha Ikasda Uankar Yad Gathani and Ad Kalakund Kalu Gurbara Kalu Karkar Bernam Jetjarnanam Anishajigata Ajijinabatu and Chanjigata and Ranjibatu and Totupundari and Tadabara due to Dharma, the due to Karma and Brananantu Dhamahanta Harbul Manashanda, Dau Prasad, Gom Karnalia Hair Kalia and Kalakandana Hama, Mandana and Jagadishabraham, Parameshabraham Kalakaran has a Babaran has a Rathikaran has a Gigaran, Manamana and Jagajana, Sarbung Parahan, Sarbung Karan Sarbu Pasha, Sarbunasa, Karuna Karan, Bisubam Parahan, Sarbisubran, Jagadishabraham, Brahmanas, Kalakandas, Parthi Parahan, Karuna Karahaja, Pajapahasa, Patha Bahan, Gratagra, Tamra, Tamra, Tamra, Tamra, Tamra, Tamra, Tamra, Tamra, Tamra, Tamra, Amritishabraham, Parameshabraham, Agrita, Grita, Amrita, Amrita, Ajabha, Grita, Amrita, Amrita, Narayaka, Kalakayaka, Bishwam, Parahan, Karnalaya, Hendrabhanayaka, Sarabhayaka, Pau Panjana, Araganjana, Ripadapana, Japajapana, Akalam, Krita, Sarabha, Krita, Karta, Karha, Harta, Harha, Paramatma, Sarabhatma, Atamba, Sanjas, Kajasa, Pujanga, Pariyad, Shanda Namasur, Surya, Namo Chandra, Chandra, Namo Raja, Raja, Namo Indra, Indra, Namo Andakari, Namo Dej, Dej, Namo Brand, Brand, Namo Bij, Bij, Namo Rasang, Dham, Sang, Shanda, Rupe, Namo Paramatatanga, Tatanga, Sarupe, Namo Yoga, Yogi, Namo Gyan, Gyan, Namo Mantra, Mantra, Namo Tyan, Tyan, Namo Jodhi Jodhi Namo Gyan Gyanin Namo Poji Poji Namo Pana Pane Namo Kalekarta Namo Shant Rupe Namo Indra Indra Nadang Viputte Kalankar Rupe Alankar Alanke Namo Asasi Namo Banka Banke Apangis Rupe Nangi Aname Drapangis Rukali Nangi Akame Kachari Shambha Jaya Laya Paya Vepu Ajuvanase Kase Kanja Panja Lakapak Akal de Alalika Beka Namakama Gahata Anati Brahmate Joni Monina Ragina Rangina Rupina Reke Karmana Barmana Ganja Leke Pujanga Brayat Shandu Namasal Praname Samasal Pranasi Evangela Name Samasal Nevasi Nirakaman Babute Samasal Rupe Kokarmang Pranasi Sudharmang Babute Sada Sachidananda Sadrang Pranasi Grimal Kananda Samatul Nevasi Ajay Babute Vijay Vani Mahari Ankari Ankari Madrahime Chatarjakar Bharati Chatarjakar Bhukte Suyam Pau Subang Sarvada Sarvajukte Dukalang Pranasi Dayalang Sarupe Sadang Sangya Pangang Babute Chatarjakar Bharati Chatarjakar Bhute, Sujam Pav Subung Sarvajang Sarvada Sarvajavate, Dukaling Pranasi, the Alam Srupe, Sadanga Sange, Bangang Bhute Satanam Sri Vahiguru Sahib Jiyo, Tau Prasad Savaye, Uvankar Sadguru Prasad Tau Prasad Savaye, Padishai Dasami Sarabhaka Sudha Samusudhana ke Dekhpiru Karjo Jati ke Sur Sarajan Sudha Sudhade ke Samsam Gune ke Mati ke Sari Deshkar Dekhraya ke Mata Kouna Dekhit Pran Pati ke Sri Bhagavan ki Pahikar Pahun te Ekrati Vene Ekrati ke Mati Madanga Jariya Sangha Nupatanga Suranga Savari Kodhdranga Kurangse Kudhata Panka Vatakan Kujata Nevari Pari Pujan ke Bhupali within our season of Jat Pichari, Ete Pai Tokam by Bhupatan the Konangi, Pai Pazari Jeeta, Firas of the Sanako Baj, the Tolamarangan Gari, Gunja the Guru Vijanaka Sundara, Hemsa the Hai Raja Hajari, Buddha Bhaka Bhavanaka Bhupat the Konangan and Injat Pichari. Sari Pata Sari Bhagavan, Pajivana, Antaka Antaka Amasadari, Tirathan Anada, the Madana, Susan Jamani, Manaka Bazika, Abis Brahman, Kadiv Kuran, Jimin Jaman, Susan Kabika, Pauna Haru, Jati Yazar, Sabasubajar, Hajar Kadika, Sari Bhagavan, Pajivana, Bhubade, Karativane, Kanalekai.
Todas Bahadur and Tadvasus Asanadur Jandalangi, Bariguman Pariman Makaru, Parvatamankal in Halangi, Tora Rinmarurma Vasana, Matavandanganaman Malangi, Saripasaripavan Kirpavana, Tiagajahana Jandalangi, Bira Parvadera Vaparyan of Jalisargizar of Sayya, Tora Desmilanda Vasana, Matayan Kaman Raya. Garde, Granakoto, Kotunaha, Subatani, Jagjar, Lavaya, Saiv Sri Savko, Sranaika, Jajakane, Swayak, the Vaya, Dana Vadi, Pavanandana Sacher, Putapa, Kapavanja Pange, Jivita, Jalama Salame, Bali, Balama, Savasavasa Mangi, Ponaparadapan about Jatadana, Papanakiba, Punjaka Pange, Sazamu, Prasana Pray, Jagasadar Savavaru, Japangi. Man of Indra, the Janta, the Kora, the Karangi, Kotishan, the Kazan, and his Rambarzai, Barangi, Brahma, his business, the Pathe, and the Pathetan, Path, Barangi, the Pathaka, the Inner Fairna, the Rangi, Kaham, Pahoja, the Lutheran, Mudaka, a better book than Lagayo, Nahat, Billy, Sasamundran, Loka, Purlokayo, Baski of Antropatica, CSA, Subas, Dio, Sajuka, Sonalio, Sabai, Jen Premkio, then he propio, Kobutanko Puja, Hapas, Gomertanko Pujantayo, Purkaya, Joseph Jago, Sripovanako, Pedanapayo, Satanam, Sri Vahiguru Sahibji, Path, Chai, the Swing, Kabyo, Baj, Bin, Tijapai. हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए जत की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पार हमरे दोष्ट सब तुम काबह आप हाथ दे मोहि बचाव सुखी बसे मोरु परिवार सेवक सिख सब करदार मोर अच्छा निज कर दे करें सब बैरन का आज संगरें पूर्ण होए हमारी आशा दूर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अबर न ध्यान जो बर चाहो तुम ते पाऊं सेवक सेख मारे तारी है चन चन सतर मारे मारी है आप हाथ दे मुझे भरे आए मरण काल का द्रास भरे आए पूजो सदा हमारे बचा सरिया तुझ करे और रचा राख ले उम्र कर हारे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो प्री चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्म बदरा काल पाए शिव जुग अवतरा काल पाई कर विषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जबन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जो थियो जबन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहि हमारा जबन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आदि अंत एक अवतार सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सतरन को बलम बध कियो गड़गड़ के अंदर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी दे गुंजर सुला सब पर कृपा दृष्टि कर फूला संतन नख पाई दे दुखी सुख पाई साधन के सुखी एक एक की पीर पछान है गड़गड़ के बट बट की जान जब उद गर्फ कर करतार प्रजा धरत तब दे अपार जब या करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही तेरा ते निरालम जानत वेद भेद यार आलम निरंकार निर्विकार निरलंब आद नील नाद संभ दाका मूढ़ चारत भेदा जागो पे ब्रह्म पावत भेदा सांको कर बहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का जीनत न भैव आप अपनी बुद्ध है जेती मरनत बहन बहन दोहे देती तुमरा लिखा न जाए पसारा के बिद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पज खान बहोर रच दीनी कहूं भूल राजा हव बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए जम्पव आज जगा स्वरूप से जम्पव
अबरछा मेरी तुम करो सिख बार सिख संग रहो दौड़ी देवड़ो दुदाता सकल मलेश करो रण गाता जे अस तुझ तब सरणी परे दिन के दुष्ट दुख धवे मरे पुरुष अवन भग परे त्यारे दिन के तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नहीं आए रचा हुई ताए सो काला दुष्ट टर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाय हर हो ताके ताप धन कम हर हो रद सिद कर्मो सब होई दुष्ट शाश्व सघन कोई एक बार जंत मैं संभारा काल बाद देता उबारा जैन नर नाम तिहारु कहा दार्द दुष्ट दोगते रहा खड़गे तुम शरण तिहारी आवा दिल उबारी

रखी दादू जग में आया, जोत रखी दुध बेच दादू जग में आया। हरे आपे माता आपे पिता, जन जीव पाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया दा जलत हुआ, जलत नदरी आया। कहे नानक श्रेष्ठ का मूल रचिया, जोत रखी दादू जग में आया। मन जाओ भया प्रभागम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया। हर गाओ मंगल ने सखी सुख दुख न भया पे, गुर चरण लागे दिन सभागे अपना पर जा पे। आन हत बाण

0: सुनते बनीत कहते भगत सतगुर भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लगे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ठाकुर जीओ पिंड सब के
1: कोई ना जाने। हम

जाते कशु न पाइय पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा ध्याई है। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवां घर दूजा मात गर्भ मह अपन सिमरन दे तह तुम रखन हारे। पावक सागर सहा लहर मह तारु तारण हारे। मात गर्भ मह अपन सिमरन दे तह तुम रखन हारे। पावक सागर सहा लहर मह तारु तारण हारे।

कहो किते कहो मेरे सम्मान करण हार तरण जाने तू दाता मांगन कौ सकली दान दे प्रभ बन खिन मह अवर खिन मह अवरा चरज चलत तुम्हारे रूढ़ो गूढ़ो गहर गंभीरा ऊंचा अगम अपारे साध संग जो तुम मिलायो तो सुनी तुम्हारी वाणी

पौड़ी आपने आप साजो आपने रचना दुई कुदरत साजी है कर आसन दिठोचा दाता करता आप तू।

पौड़ी भगत तेरे मन भाव दे दर सोहन कीर्त गाम दे नानक कर्मा बाहरे दर ढोना लही ताम दे एक मूल ना बुझना अपना अण हुंदा।

कर्ण रावण हार प्रभदाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला सो प्रभ अंतर जामी सतनाम श्री वाहिगुरु जी सोरठ महला पंजवा कर दूजा मात गर्भ महयापन सिमरन दे तह तुम राखन हारे पावक सागर अथाह लहर मह तार हो तारण हारे मात गर्भ महयापन सिमरन दे तह तुम राखन हारे पावक सागर अथाह लहर मह तार हो तारण हारे मादा तू ठाकुर सिर मोरा इहा उहा तुहारो तोरा राओ किते कौ मेरा सम्मान करण हार करण जानै तू दाता मांगन कौ सगली दान दे प्रभ पानै खिन महे अवर खिन महे अवर आचार्य चलत तुम्हारे रूढ़ो गूढ़ो गहर गंभीर ऊंचा अगम अपारे साध संग जो तुम मिलायो तौ सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्बाणी साध संग जो तुम मिलायो तौ सुनी तुम्हारी बाणी आनंद

पाया गुरु ज्ञान रहाओ अंतर की गत जानिए गुरु मिलिया संक उतार मोया जित कर जाइए चित जोलिया मर मार अनहद शब्द सुहावने पाइए गुरु विचार अनहद वाणी पाइए ताहो में होए बच बनास सतगुर से अपना हो सब कुरबाणी तास खाड़ दरगाह पहनाइए मुखर नाम निवास जा देखा ता रव रहे शिव शक्ति का मेल त्रै गुण बंदी दिहरी जो आया जग सो खेल वजोगी दुख बिछड़े मन मुखल है ना गेल मन बरागी करो से सच बहराता होए ज्ञान महारस भोग बहुड़ भूख न होए नान के मन मार मिल पी फिर दुख न होए फिर राग मल्ला फैलाए मनो मूर्ख लोभिया लोभे लगा लबाण शब्द न पीजे साकता दुर्मत आवन जान साधु सतगुर जी मिले ता पाइए गुणी निदान मन रे हो हमे छोट गुमान हर गुर सरबा सरवर सेव तू पावे दरगह मान रहाओ राम नाम जप दिन सदात गुरु का हर पन जान साव सुख हर रस भोग संत सवा मिल ज्ञान नित अहन हर प्रभु सेव्या सतुरिया नाम कुकर कूर कुमाइय गुरनिंदा पचे पचान परमे पूजा दुख कनो जम मार करे खोलहान मान मुख सुख ना पाइए गुरमुख सुख सवान एंदे अंदे एथे तंद पटाइए सच लिखत परवान हर सज्जन गुर वे सेवदा गुर कर करनी प्रधान नानक नाम न विसरे कर्म सच्चे निशान श्री राग महला पहला एक तिल प्यारा विसरे रोग वडा मन माहे क्यों दरगह पत पाइए जा हर नाम से मन अमाहे गुर मिलिया सुख पाइए अगन मरे गुण गमाहे मन रे अनुसार गुणसार जिन खिन पल नाम ना विसरे ते जन विरले संसार रहाओ ज्योति ज्योत मलाइए सुति सुत संजोग हिंसा में गत गए नाही से सारो गुरुमुख जिस हर मन वसे जिस

तारे संसार मैं इह आस इहो आधार रहो। मुख निंदा आखा दिन रात पार कर जो ही नीच सुनाए सुनात काम गो तन विषय चंडाल चाणक रूप रहा करतार पाही सुरत मुलुकी वेश होंठ गवाड़ा ठगी वेश खड़ा सियाण बहुता पार चाणक रूप रहा करतार मैं कीता न जाता हराम खोर हों क्या मुद सा चुस्त चोर नानक बीच कह विचार चाणक रूप रहा करतार से जाग महला पहला कर चौथा एका सुत जीते है जी सुरत बहुना कोई न।

जिया भूल बिगाड़े बिगाड़े बोल। तू नगरी अंदर तुल तुल ध्यान करनी ता पूरी मत करनी बाजो कट्टे कट। प्रणत नानक ज्ञानी कैसा होए आप पछाणे बुझे सोए गुर प्रसाद करे विचार सो ज्ञानी दरगह प्रवान। श्री राग महला पहला कर दू चौथा सुंदरियाओ दाना बीना मैं मछली कैसे अंतल हाँ जहाँ जहाँ देखा तहाँ तहाँ तू है। तुझ ते निकसी फूट मरा ना जाना म्यो ना जाना जाली जहाँ दुख लागे ता तुझे संभाली। रहाओ तू भरपूर जान्या मैं दूर जो किश करी सो तेरे हदूर तू देखे हो मुकर पाऊँ।

जाओ पोथी पर प्राण कमाइए भौ तन वट भौ वट्टी तन पाइए सतबुज ने आप जल आन जलाइए ये तेल दीवा जले कर चानन साहब तो मिले रहाओ एक तन लागे बाणिया सुख होवे स्थिर कमाणिया सब दुनिया आवन जानिया बिच दुनिया सेव कमाइए ता दर है वैसन पाइए कहो नानक वहां लड़ाइए एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला तीजा कर पहला हाँ सतगुर सेवनी अपना एक मन के एक चित पाए सतगुर मन कामना तीर्थ है जिस नू देव बजाए मन च जावर पावना जो इच्छे सो फल पाए नाओ त्याए नाओ मंगिए नामे सह समाए मन मेरे हर रस चाक तिख खजाए जिन्नी गुरमुख चाख्या सजे रहे समाए रहो जिन्नी सतगुर सेविया तिन्नी पाया नाम निधान अंतर हर रस रव रहा चूका मन अभमान हृदय कमल प्रगासया लागा सह

दुख प्रभ कटिए सुख प्राप्त होए गुर कै भाणे जो चले दुख ना पवे कोए पावे कोए गुर कै भाणे विच अमृत है सहसे पावे कोए सहजे पावे कोए जिन्ना प्राप्त तिन विया होमे विचों खोए नानक गुरमुख नाम ते आइए सच बुलावा होए श्री राग महला तीजा।

रत्या सचो पल पाए भुलण अंदर सब को अपुल गुरु करतार गुरमत मन समझाया लागा तिसे प्यार नानक साच ना विसरे मेले शब्द अपार श्री राग महला पहला तृष्णा माया मोहनी सुत बंधप कर नार तन जो मन जग ठगिया लब लोभ अहंकार मुह ठगौली हौ मुई सावर तै संसार मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन अवर ना कोई मैं तुझ बिन अवर ना पावई तू पावे सुख होए रहाओ नाम साला ही रंग स्यो गुर कै शब्द संतोख जो दिसै सो चलसी कूड़ा मोह न वेख वाट वटाऊ आया नित चलदा साथ देख आखण आखे के तड़े गुर बिन बूझ न होए नाम वडाई जे मिले सच रपे पत होए जो तुद पावे से पले खोटा खरा कर न कोए गुर सरनाई छुटिए मनमुख खोटी रास अष्ट तात पात साह की घड़िए शब्द विगास आपे परखे पारखू पवे खजाने रास तेरी कीमत ना पवे सब डिठी ठोक वजाए कहने हाथ ना लभई सच टिके पत पाए गुरमत तू सा लाहना होर कीमत कहन ना जाए जित तन नाम ना पावई तित तन हो मैं बाद गुर बिन ज्ञान ना पाइये बिख्या दूजा साध बिन बिन गुण काम ना आवई माया फीका साध आसा अंदर जम्या आसा रस का सखाए आसा बांध चलाइये मुहे मुह चोटा खाए अब गण बद्दा मारिये छूटे गुरमत नाए सरबे थाए एक तू ज्यो पावै त्यो राख गुरमत साचा मन वसै नाम पलो पत साख हौ मैं रोग गवाइये शब्द सचै सच पाख आकाशी पाताल तू त्रिपवन रहिया समाए आपे भगती पाओ तू आपे मिहे मिलाए नानक नाम ना विसरै ज्यो पावै तिवै रजाए श्री राग महला पहला राम नाम मन बेद्या अवर के करी विचार शब्द सुत सुख उपजै प्रभ रातो सुख सार ज्यो पावै त्यो राख तू मैं हर नाम आधार मन रे साची खसम रजाए जिन तन मन साज सिगारिया तिस सेती लिबलाए रहाओ मन तन बैस अंतर होमिए एक रत्ती तोल कटाए तन मन समधा जे करी अंदिन अग्न जलाए हर नाम मैं तुल न पुजई जे लख कोटि कर्म कमाए अर्ध शरीर कटाइए सिर करवत तराए तन है मंचल गालिए पी मन ते रोग ना जाए हर नाम मैं हर नामे तुलना पुजई सब दिखी ठोक बजाए कंचन के कोट दत्त करी बहु हैवर गैवर दान पूम दान गौआ कणी पीस अंतर गर्भ गुमान राम नाम मन बेद्या गुर दिया सच दान मन हठ बुद्धि केतिया केते बेद विचार केते बंधन जिए के गुरमुख मुख द्वार सच हो ओर सब को ऊपर सच आचार सब को ऊंचा आखिए नीच ना दिसे कोई एक ने भांडे साजिए एक चानन तिहो लोए कर्म मिले सच पाइए तुर बख्श ना मिटे कोई साध मिले साधु जन संतोख वसै गुर पाए अकथ कथा विचारिए जे सतगुर माहे समाए पी अमृत संतोखिया दर

हर शिष्य बहुत लोची है कीर्तना मिटिया जाए हर का भाणा भगती मन्या से भगत पए दर थाए गुर शब्द दिड़ावै रंग स्यो बिन कृपा लाए लया ना जाए जे सो अमृत नीरिया पी बिख फल लागै ताए जे से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुर नाल प्यार सतगुर का भाणा कमाव दे बिख हम मैं तज विकार मन हट किते उपाय ना छूटिए सिमृत शास्त्र सोधो जाए मिल संगत साधु उभरे गुर का शब्द कमाए हर का नाम निदान है जिसे अंत ना पारावार गुरमुख से ही सोहदे जिन कृपा करे करतार नानक दाता एक है दूजा और ना कोई मिल संगत साधु उभरे गुर का शब्द कमाए हर का नाम निधान है जिस अंत ना पारावार गुरमुख से ही सोहदे जिन कृपा करे करतार नानक दाता एक है दूजा और ना कोई गुर प्रसादी पाइए कर्म प्राप्त होए श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावड़ा सच चुगे गुर पाए हर रस पीवे सहज रहे उड़े ना आवे जाए निज घर वासा पाया हर हर नाम समाए मन रे गुर की कार कमाए ए गुर कै भाणै जे चले ता आन दिन राचे हर नाए रहाओ पंखी बिरख सुहावड़े ऊढ़े चहो दिस जाए जेता ऊढ़े दुख घणे नित दाजे तै बिल लाए बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचे शब्द सुभाहे सुभाए साखा तीन निवारिया एक शब्द लिव लाए अमृत फल हर एक है आपे दे खवाए मनमुख

सचा तैसा ही होए। नानक नाम वडाइया करम प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम से आइए मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही सुख पाइए सहजे रह समाए। पाई रे दर्शन दासा होए। गुर की सेवा गुर भगत है बिरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागणी जे चले सतगुर पाए। सदा फिर नहीं चल पाइए ना ओह मरै ना जाए। सद मिली ना भी छुड़ै फिर कै अंक समाए। हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़ै ना बूझे भेखी भरम भुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चुकाया गुरमति सहज सुभाए। बिन शब्द जग दुखिया फिर मनमुख नो गई खाए। सबदे नाम त्याइए सबदे सच समाए। माया भूले सिद्ध फिरे समाध ना लगे सुभाए। तीने लो व्यापत है अधिक रही लपटाए। बिन गुरु मुक्त ना पाइए ना दुविधा माया जाए। माया किसनो आखिए क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एह जियो बुद्ध है हों मैं कर्म कमाए। बिन शब्द भरम ना चुकई ना विच हो हों मैं जाए। बिन प्रीति भगत ना हो गई बिन शब्द थाए ना पाए। सब दे हों मैं मारिए माया ना का भ्रम जाए। नाम पदार्थ पाया गुरमुख सहज सुभाए। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए। भगत वचल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक सब दे हर साला ही है कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा माया मोह मेरे प्रभ कीना आपे परम भुलाए। मनमुख कर्म करे नहीं बूझे बिरथा जन्म गवाए। गुरबाणी इस जग महचानन कर्म वसै मन आए। मन रे नाम जप हो सुख होए। गुर पूरा सा लाही है सहज मिले प्रभ सोए। रहाओ परम गया पौल भाग्या हर चरणी चित लाए। गुरमुख शब्द कमाइए हर वसै मन आए। घर महल सच समाइए जम काल ना सकै खाए। नामा छीबा कबीर जो लाहा पूरे गुरते गत पाई। ब्रह्म के बेते शब्द पछाणे हों मैं जात गवाई। सुर नर तिन की बाणी गावे कोई ना मिटे पाई। दैत पुत कर्म धर्म किच संजम ना पड़े दूजा भाव ना जाने। सतगुर भेटिए निर्मल हुआ अंधन नाम वखाणे। एको पड़े एको ना ओ बूझे दूजा अवर ना जाने। खट दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम पुलाए। सतगुर सेवे तागत मित पावे हर जियो मन वसाए। सच्ची बाणी स्योचित लागे आवन जान रहाए। पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणे बिन गुर परम पुलाए। लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाए। जा ना ओ चेतै तागत पाए। जा सतगुर मेल मिलाए सत संगत मह नाम हर उपजै। जा सतगुर मिले सुभाए। मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए। साध बलिहारी गुर अपने विटो जे हर सेती चित लाए। सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर सेती रंग राता। प्रभ नित वसै सबना घट अंतर गुरमुख विर लै जाता। नानक नाम मिले वडियाई गुर कै शब्द पछाता। श्री राग महला तीजा सहजे नो सब लोच दी बिन गुर पाया ना जाए। पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके भेखी भरम भुलाए। गुर पेटे सहज पाया अपनी कृपा करे रजाए। भाई रे गुर बिन सहज ना होए। सब दही ते सहज उपजै हर पाया सच सोए।

सदा सदा सहज समाध लगाए, सहजे ही गुण उचरे, सहजे ही गुण उचरे, भगत करे लेव लाए, सबदे ही हर मन वसै, रसना हर रस खाए, सहजे काल विडारिया, सच सरनाई पाए, सहजे हर नाम मन वसया, सच्ची कार कमाए, सेवड भागी जिनी पाया, सहजे रहे समाए, माया बिच सहज ना उपजै, माया दूजे पाए, मन मुख कर्म कमावणे, होमै जलै जलाए, जमण मरण ना चुके, फिर फिरिया वै जाए, त्रेह गुणा विच सहज ना पाईऐ, त्रै गुण भरम फुलाए, पढ़िए गुणिया क्या कथिए, जा मुढ़ो कुथा जाए, हम चौथे पद में सहज है, गुरमुख पल्लै पाए, निर्गुण नाम निदान है, सहजे सोजी होए, गुणवंती सा लाहिया, सच्चे सच्ची सोए, भुल्या सहज मिलाए सी, शब्द मिलावा होए, बिन सहज सब अंध है, माया मोह गुबार, सहजे ही सोझी पई, सच्चे शब्द पा

लाहिय जैसा अंत ना पारावार ज्ञानिया का तन नाम है सहज करे व्यापार आंदेन लाहा हर नाम लैन अखुट परे भंडार नानक तोट न आवई दिए दे वनहार श्री राग महला तीजा सतगुर मिलिया फिर ना पवै जन्म मरण दुख जाए पूरा शब्द सब सोजी होई हर नाम में रह विस्माए मन मेरे सतगुर से चित लाए निर्मल नाम सद नवतनो आप वसै मन आए रहाओ हर जियो राखो अपनी शरणाई ज्यो राखे त्यो रहना गुर कै शब्द जीवत मरे गुरमुख पव जल तरना वड़े भाग नाओ पाइये गुरमत शब्द सहाई आपे मन वस्या प्रभ करता सहजे रहया समाई एक ना मन मुख शब्द ना पावे बंधन बंध पवाया लख चौरासी फिर आवे बिरथा जन्म गवाया भगता मन आनंद है सच्चे शब्द रंग राते आंदिन गुण गावे सद निर्मल सहजे नाम समाते गुरमुख अमृत बाणी बोले सब आत्म राम पछाणी एको सेवन एक राधे गुरमुख कथ कहानी सच्चा साहिब सेविए गुरमुख वसै मन आए सदा रंग राते सच सियो अपनी कृपा करे मिलाए आपे करे कराए आपे एक ना सुत्या दे जगाए आपे मेल मिलाए दा नानक शब्द समाए श्री राग महला तीजा सतगुर सेविए मन निर्मला भय पवित शरीर मन मन आनंद सदा सुख पाया भेटिया गहिर गंभीर सच्ची संगत बैसना सच नाम मन तीर मन रे सतगुर सेव ने संग सतगुर सेविए हर मन वसै लगे ना मैल पतंग रहाओ सच्चा शब्द पत उपजै सच्चे सच्चा नाओ जिनी हो मैं मार पछाणिया हो तिन बलिहारै जाओ मनमुख सच ना जाननी तिन ठौर ना कथु थाओ सच खाना सच पहनना सच्चे ही विश्वास सदा सच्चा सालाहना सच्चे शब्द निवास सब आत्म राम पछाणिया गुरमति निज घर वास सच वेखण सच बोलना तन मन सच्चा होए सच्ची साखी उपदेश सच सच्चे सच्ची सोए जिनी सच विसारिया से दुखिए चले रोए सतगुरु जिनी ना सेवियो से कित आए संसार जम दर बदे मारिए कूक ना सुने पुकार बैठा जन्म गवाया मर जमे वारो वार एह जग जलता देख कै भज पे सतगुर सरना सतगुर सच दिड़ाया सदा सच संजम रहना सतगुर सच्चा है बोहे था सब दे पव जल तरना लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त न होई पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पत खोई सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवरना कोई जो सच्चा लाए से सच लगे नित सच्ची कार करन तिन्ना निज घर वासा पाया सच्चे महल रहान नानक भगत सुखिए सदा सच्चे नाम रचन श्री राग महला पांचवा जाको मुस्कलत बनै ढोई कोए ना दे लागू होए दुश्मना साखी भज खले सबो भजे आसरा चुकै सब असराओ चेत्या वै उस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती वाओ साहिब ने ताणिया का ताण आए ना जाई थिर सदा गुर सबदी सच जान रहाओ जे को होवै दुबला नंग भुख की तीर दमड़ा पलै ना पवै ना को देवै तीर स्वार्थ ना को करे ना किछ होवै काज चित आवै उस पार ब्रह्म निचल हो वैराज जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग क्रिस्त कुटंब प्लेटिया कदे हर्ख कदे सोग गौन करे चहो कुंठ का घड़ी ना बैसन हो सोए चित आवै ओस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए काम क्रोध मोह वस्त किया किरपन लोभ प्यार चारे किलविख उन अघ किए हुआ असुर संहार पोथी गीत कवित किछ कदे ना करन तरिया चित आवै ओस पार ब्रह्म तन निमख सिमरत तरिया सास सिमरित वेद चार मुखागर बिचरे तपे सपीकर जोगिया तीरथ गवन करे खट कर्मा ते दुगने पूजा करता नाए रंग ना लगी पार ब्रह्मता सर पर नर के जाए राज
ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਸਿਕਦਾਰੀਆ ਰਸ ਭੋਗਣ ਬੇਸਥਾਰ ਬਾਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚੱਲੇ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹੁ ਵਿਧੀ ਚਾਏ ਲੱਗ ਰਹਿਆ ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹੁ ਵਿਧੀ ਚਾਏ ਲੱਗ ਰਹਿਆ ਚੇਤਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਸਰਬ ਕੀ ਜੂਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਤਨਾੜ ਅਚਾਰਵੰਤ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈਆ ਸਾਜਨ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਲਸਕਰ ਤਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬੰਧ ਜੀਓ ਜੀਓ ਸਗਲੀ ਕੀਤ ਚੇਤਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਖੜ ਰਸਾ ਤਲ ਦੀਤ ਕਾਇਆ ਰੋਗ ਨਾ ਛਿਦਰ ਕਿਛ ਨਾ ਕਿਛ ਕਾੜਾ ਸੋਗ ਮਿਤ ਨਾ ਆਵੀ ਚਿਤ ਤਿਸ ਅਹਿਨਸ ਭੋਗੈ ਭੋਗ ਸਭ ਕਿਛ ਕੀ ਤੋਨ ਆਪਣਾ ਜੀਅ ਨਾ ਸੰਕ ਧਰਿਆ ਚਿਤ ਨਾਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਮ ਕੰਕਰ ਵਸ ਪਰਿਆ ਕਿਰਪਾ

चिम चिम अमृत वर्ष दा बोलाया, बोली खसम दा बहुमान किया। तुत उपरे तू आपे पाए हे, खाए जियो तेरिया भगता भुख सद तेरिया। हर लोचा पूरन मेरिया, देह दर्स सुखदात्या मैं गल विच लहो मिलाए जियो। तुद जेवड़ अवरना पालिया, तू दीप लो पै आलिया। तू थान थनंतर रव रहिया, नानक भगता सच आधार जियो। हो गोसाई दा पहलवानड़ा, मैं गुरमिल उच दुमालड़ा। सब होई छिंज इकठिया, दियो बैठा दे देखे आप जियो। वात वजन टमक फेरिया, मल लथे लैदे फेरिया। निहत्ते पंज जवान मैं गुर थापी दित्ती कंड जियो। सब इकट्ठे होया कर जासन वाट वटाया।

सुन सुन तुझे ध्याए दे तेरे भगत रते गुण तास जो मैं जुग जुग दई सेवड़ी गुर कट्टी में हड्डी जेवड़ी हो बाहुड़ छिंज ना नचो नानक अवसर लदा।

ऐण कै वण जा रिया मित्रा हुकम पया गर्भास उर्द तप अंतर करे वण जा रिया मित्रा खसम से तीरदास खसम से तीरदास वखाण उर्द ध्यान ले विलागा नाम अरजाद आया कल पीतर बाहुड़ जासी नागा जैसी कलम बुड़ी।

चेतै प्राणी बकल पया बिकल पया संग माया धन त्यो रत्ता जो बन मत्ता अहिला जन्म गवाया धर्म से ती वापार ना कीतो कर्म ना कीतो मित कहो नानक तीजै पहरे प्राणी तन जो बन स्यो चित चौथे पहरे रहन कै वन जारिया मित्रा लावी आया खेत जा जम पकड़ चलाया वन जारिया मित्रा किसे न मिलिया भेत भेत चेत हर किसे न मिलियो जा जम पकड़ चलाया झूठा रुदन हुआ दे दुआ लै खिन मह पया पराया साई वस्त प्राप्त होई जिस स्यो लाया हेत कहो नानक प्राणी चौथे पहरे लावी लुणिया खेत श्री राग महला पहला पहले पहरे रहन कै वन जारिया मित्रा बालक बुद्ध अचेत खीर पिए खेलाइए वन जारिया मित्रा मात पिता सुत हेत मात पिता सुत निह कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया कृत कमाया।

कर सेवो पूरा सतगुरु वण जा रहा मित्रा सब चली रहन विहादी हर सेवो खिन खिन ढिल मूल ना करो जित आस्थिर जुग जुग होवो हर सेती सद मान हो रलिया जन्म मरण दुख खोवो गुर सतगुर स्वादी गुर सतगुर स्वामी भेद ना गुर सतगुर स्वामी भेद ना जानो जित मिल हर भगत सुखांदी कहो नानक प्राणी चौथे पहरे सफल्यो रहन भगता दी श्री राग महला पंजवा पहले पहरे रहन के वन जारिया मित्रा धर पायता उदरे माहे दसी मासी मानस किया वन जारिया मित्रा कर मोहलत कर्म कमाहे मोहलत कर दीनी कर्म कमाने जैसा लिखत तुर पाया मात पिता भाई सुत बनिता तिन पीतर प्रभु संजोया कर्म सुकर्म कराए आपे इस जनते वस किछ नाहे कहो नानक प्राणी पहले पहरे धर पायता उदरै माहे दूजे पहरे रहन के वन जा रिया मित्रा पर जवानी लहरी दे बुरा भला ना पछाणई वन जा रिया मित्रा मन मता अहमे बुरा भला ना पछाणे प्राणी आगे पंथ करारा पूरा सतगुर कभू ना सेविये सिर ठाडे जम जंदारा धर्म राय जब पकरस बवरे तब क्या जवाब करे कहो नानक दूजे पहरे प्राणी पर जो बन लहरी दे तीजे पहरे रहन के वन जा रिया मित्रा बिख संचय अंध अज्ञान पुत्र क्लत्र मोह लपटिया वन जा रिया मित्रा अंतर लोभ अंतर लहर सुआन अंतर लहर लोभान परानी सो प्रभ चेतना वह साध संगत स्यो संग ना किया बहु जो नी दुख पावे सिरजनहार विसारिया स्वामी एक निमख ना लगो ध्यान कहो नानक प्राणी तीजे पहरे बिख संचे अंध अज्ञान चौथे पहरे रहन कै वण जा रिया मित्रा दिन नेड़े आया सोए गुरमुख नाम समाल तू वण जा रिया मित्रा तेरा दर गह बेली होए गुरमुख नाम समाल प्राणी अंते होए सखाई एह मोह माया तेरे संग ना चाले झूठी प्रीत लगाई सगली रहन गुदरी अंधियारी सेव सतगुर चानन होए कहो नानक प्राणी चौथे पहरे दिन नेड़े आया सोए लिखिया आया गोविंद कावन जा रिया मित्रा उठ चले कमाना साथ एक रत्ती बिलमना देवनी वन जा रिया मित्रा उनी तकड़े पाए हाथ लिखिया आया पकड़ चलाया मनमुख सदा सुहेले जिन्नी पूरा सतगुरु सेव्या से दर्ग है सदा सुहेले कर्म धरती शरीर जुग अंतर जो बो वैसो खात कहो नानक भगत सोहे दरबारे मनमुख सदा पवात श्री राग महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंद यानी पेयड़ क्यों कर हर दर्शन सिख है हर हर अपनी कृपा करे गुरमुख साहुरड़ कम सिख है साहुरड़ कम सिख है गुरमुख हर हर सदा त्याए कहिया विच फिरे सुहेली हर दरगह बहाल उड़ाए लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम किरख है मुंद यानी पेयड़ गुरमुख हर दर्शन दिखे विवाह हुआ मेरे बाबूला गुरमुखे हर पाया अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बुलाया बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनस्या हर रत्न पदार्थ लादा हो मैं रोग गया दुख लाता आप आपै गुरमत खादा अकाल मूरत वर पाया अविनाशी ना कदे मरे ना जाए बियाहो हुआ मेरे बाबूला गुरमुखे हर पाया हर सत सत्ते मेरे बाबूला हर जन मिल जंज सुहांदी पेव कड़े हर जप सुहेली विच साहुरड़े खरी सुहांदी साहुरड़े विच खरी सुहांदी जिन पेव कड़े नाम समालिया सब सफल्यो जन्म तिना दा गुरमुख जिन्ना मन जिन जिन पासा टालिया हर संत सज्जना मिल कारज सोहिया वर पाया पुरख आनंदी हर सत सत मेरे बाबूला
ਹਰ ਜਨ ਮਿਲ ਜੰਜ ਸੁਹੰਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ ਹਰ ਕੱਪੜੋ ਹਰ ਸੋਭਾ ਦੇਵੋ ਜਿਤ ਸਵਰੈ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ ਹਰ ਹਰ ਭਗਤੀ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਨ ਦਿਵਾਇਆ ਖੰਡਵਰ ਭੰਡ ਹਰ ਸੋਭਾ ਹੋਈ ਇਹੋ ਦਾਨ ਨਾ ਰਲੈ ਰਲਾਇਆ ਹੋਰ ਮਨਮੁਖ ਦਾਨ ਜੇ ਰੱਖ ਦਿਹਾਲੇ ਸੋ ਕੂੜ ਅਹੰਕਾਰ ਕਚ ਪਾਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ।

जावे नित देवे चढ़े सवाया नानक संत संत हर एको जप हर हर नाम सुहंदी हर राम राम मेरे बाबूला फिर मिल धन वेल वधंदी श्री राग महला पांचवां शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन मेरिया मन प्यारिया जियो मित्रा गोबिंद नाम समाले मन प्यारिया जी मित्रा हर निभै तेरे नाले संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई न जाए मन चिंदे सही फल पावे चरण कमल चित लाए जल थल पूर रहया बनवारी घट घट नदर निहाले नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे मन प्यारिया जियो मित्र मित्रा बिख सागर संसारे चरण कमल कर बोहित करते सहसा दुख न व्यापै गुर पूरा भेटै वडभागी आठ पहर प्रभ जापै आद जुगादी सेवक स्वामी भगता नाम अधारे नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे मन प्यारिया जियो मित्रा हर लदे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा हर दर निहचल मली हर दर सेवे अलख पेवे निहचल आसन पाया तह जन्म न मरण न आवन जाना संसार दुख मिटाया चित्रगुप्त का कागद फारिया जम दूता कछु ना चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लदे खेत वली मन प्यारिया जियो मित्रा कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर नाम जपत परगासो सिमर स्वामी सुख है गामी इच सगली पुनिया पुरबे कमाए श्री रंग।

धाने अमृत बाने सब सुखा मन गुठे श्री धर पाए मंगल गाए इचपुनी सतगुर तुठे लड़ लीने लाए नौनिद पाए नाओ सरबस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के शांत महला पांचवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद डखना हठ मजाहू मां पीरी पसे क्यों दीदार संत सरनाई लभने नानक प्राण आधार संत चरण कमल स्यो प्रीत रीत संतन मन आवे जियो दुतिया पाओ विपरीत अनीत दासा नह पावे जियो दासा नह पावे बिंदर सावे एक खिन धीरज क्यों करे नाम भी होना तन मन ही ना जल बिन मछली ज्यो मरे।

बाड़ी बलाए मिले मेरे रमैया मैं ले छुडाए रहाओ अनक अनक भोग राज विसरे प्राणी संसार सागर पे अमर पिया माया मूठा चेतस नाही जन्म गवायो आलसिया बिखम कोर पंथ चालना प्राणी रावसस तह ना परवेशन माया मोह तब विसर गया जा ताजी अले संसारंग आज मेरे मन प्रगट पिया है पेख लिए धर्म राव तह कर दल करुण महाबली तिन आगलड़े में रह न जाए जे को मोह उपदेश करत है ता वन तृण रतड़ा नारायण ऐ जी तू आपे सब कुछ जानदा बद तलोचन रमैया श्री राजपत कबीर जीओ का अचरज एक सुनोरे पंडिया अब किस कह न जाय सुरनर गण गर्दम जिन मोहे त्रै पवन मख लीलाई राजा राम अनंद किंगरी वाजे जाकी दृष्ट नाद लिव लागे रहो पाठी गंगन सिंगिया अर चंगिया कनक कलश इक पाया तिस में तार चुए निर्मल रस में रसन चुआया एक जो बात अनुप बनी है पवन प्याला साजिया तीन पवन में एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटिया परखोतम को कबीर संग्राता और दुनी सब परम पलानी मन राम साइन माता श्री राग बाणी भगत बैन जियो की पहरिया के कर गावना एक ओंकार सतगुर प्रसाद रे नर गर्भ कुंडाल जब आवत उर्द ध्यान लवलागा मृतक पिंड पद मदना एनस एक ज्ञान सोनागा ते दिन संबल कष्ट महा दुख अब चित अधिक प्रसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडलाया तो नरहर मनो विसारिया फिर पछताएगा मूड़िया तू कवन कुमत भ्रम लागा चेत राम नाही जम पर जाएगा जन बिचरे अनुराधा रहाओ बाल मनोद चिन्ह रस लागा खिन खिन मोए ब्यापे रस मिस मेद अमृत बिक चाखी तो पांच प्रगट संतापे जब तब संज में छोड़ सकत मत राम नाम ना राध्या उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांध्या तरन तेज पर त्रया मुख जुहे सर अवसर ना पछाणिया उन्मत का महाभिक भूले पाप ना पछाणिया सुत संबत देख ए मन गर्भया राम हृदय ते खोया अवर मत माया मन तो ले तो पग मुख जन विगोया पुंडर केत कुसुम ते तौले सप्त पताल की वाणी लोचन समर बुद्ध बल नाठी ता काम पवस मधानी तांते बिखे पई मत पावस काया कमल कमलाना अवगत मान छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछतान निकुटी दे देख तनु बुझे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे थाका तेज उड्या मन पंखी कर आंगन न सुखाई बैणी कहे सुनोरे भगतो मरण मुक्त किन पाई श्री राग तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा जो पे हम ना पाप करंता है अनंता तित पावन नाम कैसे हुंता रहो तुम जो नायक आशो में प्रभते जन जानी जे जमते स्वामी श्री राधे मुख विचार दे हूँ रविदास सम दल समझावे को राग माच चौपदे कर

0: आप तुम आप शाने हो मल्हारी संतन तेरे जिन काम क्रोध लोग मीठा जिन काम क्रोध पीठा जियो तू निर्वैर संत तेरे निर्मल जिन देखे सब उतरे काल मल नानक नाम त्याय त्याय जीवे बिनस्या परम पौ तीठा जियो आज महला पंजमा झूठा मांगन गे कोई मांगे तिसको मरते घड़ी न लागे पार ब्रह्म जो सभी सेवे जो गुर मिल न चिल करना प्रेम भगत जिसके मन लागी पुन गावे अंदन नित जागी वहां पकड़े तिस स्वामी मिले जिसके मस्तक लहना चन कमल भगता मन बूठे वन परमेश्वर सगले मुठे संत जिना की तूड़ नित बाशे नाम सचे का गहना ऊठ बैठ हर हर गाइए जे सिमट वर नह चल पाइए नानक प्रभु हुए दयाला तेरा कीता सहना राग बाज अष्टपतियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद शब्द रंगाए हुक्म सुबाए सच्ची दरगाह महल बुलाए सच्चे दीन दयाल मेरे साहबा सच्चे मन पते आवणिया हो वारी जियो वारी शब्द सुहावणिया अमृत नाम सदा सुखदाता गुरमति मन वसावणिया रहो ना को मेरा हो किसकेरा सच्चा ठाकुर रहवण मेरा हो में कर कर जाए कनेरी कर अवगण पशुता बणिया हुक्म जाने सो हर गुण वखाने फुरके शब्द नाम निशाने सबना कादर लिखा सच्चे छूट स नाम सुहावणिया मन मकपूला ठौर न पाए जम धर्मदा चोटा खाए बिन नामे को संग न साथी मुक्ते नाम त्या बणिया साक्त कूड़े सच न पावे दुविधा बाधा आवे जावे लिखा लिख न मेटे कोई गुरमुख मुक्त करावणिया पे दे फिर जातो नाही झूठ भी सुनी रोवे ताही अवगण मुठी मैल न पाए अवगण गुण बिक्षा बणिया पे दे जिन जाता प्यारा गुरमुख बुझे तत् विचारा आवन जाना ठाक रहाय सच्चे नाम सवावणिया गुरमुख बुझे कथ कहावे सच्चे ठाकर सचू पावे नानक सच कहे बनाती सच मिले गुण गावणिया माज महला तीजा कर पहला हुक्म होवे सतगुर मिलाए सेवा सुरत शब्द चित लाए हमें मार सदा चुपाया माया मोह चुकावणिया हो वारी
1: वारी जियो वारी सतगुर के बलहारिया गुरमत प्रगास हुआ जी आंदन हर गुण गावणिया

भविष्य मना मने मेरा ठाकुर सच दरडाए गुर प्रसादी सच चित लाए सचो सच वरते सबनी थाई सच्चे सच समा मने हे परवा सच मेरा प्यारा किर सब गण काट निहारा प्रेम प्रीत दियाये पै पाए भगत दरडा मनिया तेरी भगत सची जे काटन तेरी भगत सची सच्चे पावे आपे देना पछतावे समना जिया काई को दाता शब्द मार जीवा मनिया हर हर तुद।

तुझलाए ना रजा रजा कबहू सच्चे नामे पुखला बनिया इको वेखा अवन दिया गर प्रसादी अमृत पिया गर कै शक्ति का नवारी सहजे सुख समावनिया रत्न पदार्थ पल्लव त्यागे मन मखंदा दूजे पाए लागे जो बीजे सोई फल पाए सुख ने सुख न पावनिया अपनी कृपा करे सोई जन पाए गुरु का शब्द मन मसाए अंदर सदा रहे पै अंदर कै मार परम चुकावनिया परम चुकाया सदा सुख पाया वर प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण से जे गावनिया सिमत सास बेद बखाने परमे फूला तत न जाने मन सतगुर से वे सुख न पावे दुखो दुख कमावनिया आप करे किसे आखे कोई आखन जाइए जे भूला होई नानक आपे करे कराए नामे नाम समावनिया मांझ महला तीजा आपे रंगे सह सवाए गुर के शब्द

मन अवतार सुना रंग चढ़ूली पै पाए रंग चढ़ावनिया हाँ बारी जियो बारी नरपो मन बसावनिया गर कृपा ते हर नरपो त्याया बैक भोजल शब्द तरावनिया राहु मनमुख मगध करे चतराई न ता तुता थाए न पाई जे हा आया ते हा जासी कर अवगुण पछोतावनिया मनमुख अंधे कृष्ण सूजे मन लखाए आए नमो बूजे मनमुख कर्म करे नहीं पाए बहना में जन्म गवावनिया सचकारनी शब्द है सार पूरे गुर पाए मुख द्वार अंदन बाणी शब्द सुनाए सच राते रंग रंगावनिया रसना हारा रस राती गर रंग लाए मन तन मोया सहज सवाए सहजे प्रीतम प्यारा पाया प्रीतम प्यारा सहजे सहज समलावनिया जिस अंदर रंग सोई गुण गावे गुर के शब्द सहजे सुख समावे हाँ बलहारी सदा दिन विटो गुर सेवा चित लावनिया सच्चा सच्चो सच पतीजे गुर प्रसादी अंदर पीजे बैस स्थान हर गुण गावे आपे कर सत मनावनिया जिसनों नद करे सो पाए गुर प्रसादी होमे जाए नानक नाम वसे मन अंतर दर सच्चे सोभा पावनिया माज महला तीजा सतगुर सेवी वड़ी वड़ियाई हर जी अचंत।

अंदर महल बना बनिया सतगुरु दाता मिले मिलाया पूरे पाग मन सब दर्शाया नानक ना मिले वड़ियाई हर सच्चे के गुण गावनिया माज महला तीजा आपे आपे मजाया।

को नाही खाली जेही वस न पाए तेही वसे वसु वस जनावण्या मनमुख रोगी है संसारा सुखदाता विखरिया अगम पारा देखी दुखिए नेत फिर बहला दे बिनग संत न पावणिया जन की ते सोई बरजाने आप करे ता हुकम बिछाने जेहा अंदर पाए तेहा वरते आपे बार पावणिया तिस बाजो सच्चे मैं होर न कोई जिस लाए ले सो निर्मल होई नानक ना वसे कट अंतर जिस दे रे सो दे नानक नाम वसे कट अंतर जिस देवे सो पावनिया माज महला तीजा अमृत ना मन वसावनिया हाँ में मेरा सब दुख गवाए अमृत बाणी सदा सलाए अमृत अमृत पावनिया हाँ वारी जियो वारी अमृत बाणी मन वसावनिया अमृत बाणी मन वसाए अमृत नाम ध्यावनिया रहाओ अमृत बोले सदा मुख वैनी अमृत वेखे परखे सदा नैनी अमृत कथा कहे दिन रसदा रह राती अवरा आख सुनावणिया अमृत रंग तल लाए अमृत गुर प्रसादी पाए अमृत रसना बोले दिन राती मन तन अमृत पियावणिया सो कुछ करे सो चित न होई तिसदा हुक्म मेड न सके कोई हुक्मे वरते अमृत बाणी हुक्मे अमृत पियावणिया आजा जब कम करते हर करे कीरे मन भूला जांदा फेरे अमृत बाणी ज्यों चित लाए अमृत शब्द वजावणिया खोटे करे खोटे खरे तुझे आपो पाए तुझे आपे परखे लेख सवाए करे पर जाने पाए खोटे भरम फलावणिया क्यों कर वेखा क्यों सलाई गुरप्रसादी शब्द चलाई तेरे भाणे विच अमृत वसे तू भाणे अमृत पियावणिया अमृत सदा अमृत हर बाणी सतगुर सेवै दिदे समाणी नानक अमृत नाम सदा सुखदाता पी अमृत सब भुख लै जावणिया माज महला तीजा अमृत वरसे सहज सवाए गुरमुख विरला कोई जन पावे अमृत पी सदा तरता से कर कृपा कृष्ण बजावणिया रा हाँ वारी जियो वारी गुरमुख अमृत पियावणिया रचना रस चाख सदा रहे रंग राती सहजे हर गुण गावणिया रहाउ गर प्रसादी सहज को पाए दुविधा मारे सुंड लाए नदर करेता हर गण गावे नदरी सच समावणिया सपना ऊपर नदर पर तेरी किसे थोड़ी किसे है कनेरी तुझे ते बार किछु ना होवे गुरमुख सोजी पावणिया गुरमुख तत है बिचारा अमृत भरे तेरे भंडारा बिन सतगुर तेरे कोई ना पावे गुर कृपा ते पावणिया सतगुर सेवे सोजन सोए अमृत नाम अंतर मन मोहे अमृत मन तन बाणी रता अमृत सहज समावणिया मन मुख भूला दूजे पाए खुआए नाम न लेवे मरे दुख खाए अंदन सदा विश्ता मैं वासा बन सेवा जन्म गवावणिया अमृत पीवे जिसनु आप प्याए गर्म प्रसादी सहज लिवलाए पूर्ण पूर रहे सब आपे गुरमत नदरी आवणिया आपे आप निरंजन सोई जन सहजे तद आपे गोई नानक नाम समार सदा तू सहजे सच समावणिया माज महला तीजा से सच लागे जोत द पाए सदा सच सेवें सह सबाए सच्चे शब्द सच्चा सुनाई सच्चे मेर मिलावणिया हाँ वारी जियो वारी सच सलाहणिया सच ध्यान से सच राते सच्चे सच समावणिया राहु ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਸਚ ਸਚ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸਾਈਂ ਤਨ ਸੱਚਾ ਰਸਨਾ ਸਚ ਰਾਤੀ ਸਚ ਸੁਣ ਆਖਵ ਵਖਾਣਿਆ ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਸਚ ਸਮਾਣੀ ਇਨ ਮੈਂ ਇਨ ਮਨ ਦੀਠੀ ਸਭ ਆਮਨ ਜਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਦਾ ਮਨੈ ਚਲ ਨਿਜ ਕਰ ਵਸਾ ਪਾਵਣਿਆ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰੇ ਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ ਸੱਚੋ ਸੱਚਾ ਵੇਖ ਸਲਾਹੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੱਚ ਪਾਵਣਿਆ
ਜੋ ਸਚ ਰਾਤੇ ਤਨ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਸੇਵੜ ਭਾਗੀ, ਸਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮਲਾਏ ਸਤਸੰਗ ਸਚ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ, ਲੇਖਾ ਪੜੀਏ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਧੁਤ ਹੋਵੇ, ਅੰਡਨ ਸਚ ਸ਼ਬਦ ਚਲਾਹੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨ ਕੀਮਤ ਪਾਵਣਿਆ, ਪੜ ਪੜ ਸਾਕੇ ਸਾਧਨਾਈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਲੇ ਸੋਧਨ ਗਾਈ, ਬਿਖ ਬਿਹਾਜ ਬਿਖ

चिन्नामृते सुख पामणिया सदा सदा साचे तब सलाही गर्मक जाता दूजे का दूजा को नाही मन रह समाये मन मने मन मलामणिया गर्मक होवे सो सर सला सो सलाहे सच्चे ठाकर वे परवाहे नानक नाम से मन अंतर गुर शब्दी हर मलामणिया माज महला तीजा तेरे भक्त सोए साचे दरबारे गुर के शब्द नाम सवारे सदा अंदर है न राती गुण कह गुणी समावने।

सुहाने मारे सुचो सच ध्यामणिया काया अंदर पाप पन दोए पाई दोई मिले कै सुरसो पाई दोए मार जाए दोवे मार जाए एक घर आवे गुरमुख से समावनिया करी माए दूजा पाए नेरा चन होवे छोड़े होमे मेरा प्रगट शब्द है सुखदाता अंदर नाम ध्यामणिया अंदर ज्योत प्रगट पसारा गुरसाखी मिटिया दियारा कपल बगास दा सुख पाया ज्योति ज्योत मिलावणिया अंदर मैल रतनी परे भंडारा गुरमुख पाए नाम पर गुरमुख वांझे सदा व्यापारी ला नाम सद पावणिया आपे वथे आपे वथ राखे आप दे गुरमुख वांझे पे नानक जिस दर कर जिस दर कर।

0: कामांतर कमाए आप तरे सगले कुल तारे तिस दरगाह था गण पावनिया तू वड्डा तू ऊंचो ऊंचा तू बेअंता तू ऊंचो ऊंचा हो कर बानी तेरे वंजा नानक दास सामनिया माज महला पंजमा कौन मुक्त सो मुक्ता कौन सुजुगता
1: कौन सुजुगत मुक्ता कौन सुजुगता बिन वेद वद कैन वेद छूटा कैन वेद आवन जावन तुटा कौन कर्म कौन ने कर्मा कौन सो कहे कहे कहाए जियो कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया कौन सो सन्मुख कौन बेमुखिया कैन वेद मिली गए कैन वेद विछरे ए वेद कौन प्रगटाए जियो कौन सो अखर जित तावत रहता कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता कौन सो चाल जित पार ब्रह्म ध्याए कैन वेद कीर्तन गाए जियो गौरमुख मुक्ता गौरमुख जुगता गौरमुख ज्ञानी गौरमुख भक्ता ताने गृह उदासी गुरमुख गुरमुख कीमत पाए जियो हमें बांधा गौरमुख छूटा गौरमुख आवण जान टूटा गौरमुख कर्म गौरमुख ने कर्मा गौरमुख करे सुपाए।

दया बसार बिकुचना प्रभ बिन अवरण कोए प्रीतम चरणी जो लगे तिसकी निर्मल सोए नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो प्राप्त होए विसाख सुहावा ता लगे जा संत पेटे हर सोए हर जी

रंग संबे नारायण जेते मन पवन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने सोई कहिए धन अपना लिया जे मिले बिछड़ क्यों रवान जी साधु संग प्राप्ते नानक रंग मनन हर जेठ रगीला तिस तनी जिसके भाग मथाना साढ़ तपंदा तिस लगे हर नान जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस दया पाए व गुछिए गल पाई सुजम की फास जे हावी जे सो लुणा मथे जोल ख्यास रैण बहानी पछताणी उठ चली गई निरास जिनको साधु पेटिए सो दरगाह होए खलास हर कृपा कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिना दूजा को नाई नानक की अरदास आषाढ़स हुंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार दिख्या रंग कुड़ाव्या दिसन सभ्याचार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु।

उतरे से जम के बस पड़िया जिनी रावे प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया रतन जवार लाल हर कंठ इना जड़िया नानक वाछे धूड़ तेन पारा बसरनी दर पड़िया।

ओटक पेंदक पार गाए सेवा स्वामी लाओ, बिख्या पो न सकई मिल साधु गुण गाओ, जैते उपजी तै मिली सच्ची प्रीत समाओ।

आए संत सहाई राम के कर कृपा दिए मिलाए सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाही जाए ऐसे पुनी बड़ भागणी बार पाया हर राय मिल सैया मंगल गावई गीत गोविंद लाए हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे न लाए हालत पालत सवारियन ने चल दितियन जाए संसार सागत रखियन बोण न जन्मे ताए जीवा एक अनेक गुण ते तरे नानक सरनी पाए फल गुण नित सलाए जिसनु तिल ना तमाए जिन जिन नाम त्याया तिन कै काज सरे हर गुण पूरा राध्या दरगा सच खरे सर्व सुखा नित चरन हर पवजर बिखम तरे प्रेम भगत तिन पाया बिखिया नाही जरे बिखिया नाही जरे कूड़ गए दबदा नसी पूर्ण सच परे पार ब्रह्म प्रभ सेव दे मन अंदर।

त्यो राख तू सब करे तेरा कराया, एक ना बख्शे मेल है गुरमत ने तुदे लाया। एक खड़े करे तेरी चाकरी बिना में होर न पाया, होर कार बेकार है एक सच्ची कारे लाया। पोतक लतक टांबे है एक अलपत रहे जो तुद पाया, उन अंदरों बारों नरम ले सच्चे नाम समाया। श्लोक महला पहला। सोने के पर्वत गुफा करी कै पानी पयाल, कै विच धरती कै आकाशी और दरहाजिर पार। पर कर काया कपड़ पहरा तोवा सदा कार, और बग्गा रता पियल काला बेदा करी पुकार। हो एक चील रहा मलतारी दौरमत मत विकार, ना हूं ना मैं ना हूं होवा नानक शब्द विचार। महला पहला। बस्तर पखाल पखाले काया आपे संजम होवे, अंदर मैल लगी नहीं जाने बारों मल मल धोवे। अंधा फूल पया जम जाले बस्त पराई अपनी कर जाने, होमे बिच दुख काले नानक गुरमुख होमे टुटे। ता हर हर नाम त्यावे नाम जपे नामो और आदे, नामे सुख समावे पवड़ी। काया ससजोग मेल मिलाया तेन ही किया बिजोग, जीने उपाया मूर्ख भोगे भोग दुख सवाया। सुखों उठे रोग पाप कमाया, हरखों सोग बिजोग पाख पाया अपाय खपाया। मूर्ख गंत न गाने झगड़ा पाया, सतगुर हाथ नबेर झगड़ चुकाया। करता करे सहोग न चले चलाया। श्लोक महला पहला। कूड़ बोल मुरदार खाए अवरी नू समझावन जाए, मुठा आप सुहाए साते नानक ऐसा आगू जाते। महला चौथा। जैस दै अंदर सच है सो सच्चा नाम मुख सच लाहे, ओ हर मार्ग आप चलदा होर नानू हर मार्ग पाए। जे अगे तीर्थ होए ता मल लै छप्पड़ नाते संग भी मल लाए। तीर्थ पूरा सतगुरु जे अंदिन हर हर नाम ते आए, ओ आप छुटा पटंब सियोंदे हर हर नाम सब सृष्ट च पाए। जन नानक तिस वलिहारणे जो आप जपे अवरा नाम जपावे पौड़ी। एक कांत मूल चुन खाए बाण खंड वासा, एक भगवा पेस कर फिरे जोगी सन्यासा। अंदर तृष्णा बहुत साधन भोजन की आसा, व्यर्था जन्म गवाए ना गरही ना उदासा। जाम काल सिरो ना उतरे तैरवे दमांसा, गुरमती काल ना आवे नेड़े। जे होवे दासन दासा सच सच्चा शब्द सच मन कर ही माहे दासा। नानक सतगुर सेवन अपना से आसा ते निरासा। श्लोक महला पहला। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, अवर दिवाजे दुनी के झूठे अमल करे। जामा होए पलीता सतगुर सेवन अपना से आसा ते निराशा। श्लोक महला पहला। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जे रत पीवे मानसा तिन को निर्मल चीत। नानक नौ खुदायका दिल अच्छे मुख लो, अंदर दवाजे दुनी के झूठे अमल करे।

पढ़िए सिमरत पाठ, अंधा चानण रखिए, दीवे भले पचास, चौणे सोना पाइए, चुण चुण खावे कास, लोहा मरण पाइए, टहे न कोई होए कपास।

गंड नेकी सत होए। एत गंड वरते संसार, मूर्ख गंड पवे मुँह मार। नानक आखे विचार, सिरसी गंड पवे दरबार। पौड़ी आपे कुदरत सज कै, आपे करे विचार। इक खोटे इक खरे, आपे परखन हार। खरे खजाने पाइए, खोटे सुटिए बार। खोटे सच्ची दरगा सुटिए, किस आके करे पुकार। सतगुर पिछे भज पवे, एह करनी सार। सतगुर खोटिया करे करे, शब्द सवार नहार। सच्ची दरगा मनियन गुर के प्रेम प्यार। गणत तिना गणत तिना दी को क्या, करे जो आप बाक्षे करतार। श्लोक महला पहला। हम जेर जिमी दुनिया, पीरा मसाइका राया। मैं रावद बादशाह, आप छू खुदाया। एक तू ही एक तू ही, महला पहला। ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साधका।

ना रजक दस आकसे हमारा दर दर दरखत आप आस करे दहंद सुई एक तुई एक तुई महला पहला। नानक लिलार लिखिया सोए मेट न सके कोए कला तरे हिरे उसुई एक तुई पौड़ी। सच्चा तेरा हुक्म गौरमुख जानिया गौरमती आप गवाए सच पछाणिया। सच्चा सच तेरा दरबार शब्द निशानिया सच शब्द विचार सच समाणिया। मनमुख सदा कुड़ियार परम पुलाणिया बिस्टा अंदर बस साध न जानिया। बिन नावे दुख पाए आवन जानिया नानक पारख आपन जन खोटा खरा पछाणिया। श्लोक महला पहला। सिंहां बाजा चरगा कुहियां इना खवाले का खान तिना मास खुआवे खवाले इस रायरा। नदियां बिच टिब्बे दे खाले थली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही।

कर्म पवे निशान न चले चलाया। तू सच्चा दातार नित देह चढ़े सवाया, नानक मंगे दान जो तुद पाया। श्लोक महला दूजा। दिखया आख सुझाया सेवती सच समेऊ, तिन को क्या उपदेसिए जिन गुरु नानक देऊ। महला पैजा। आप बुझाए सोई बुझे, जिस आप सुझाए जिस आप सुझाए तिस सब कुछ सूझे। कह कह कथना मैं आलूजे, हुक्मी सगल करे आकार। आपे जाने सर्व विचार, अखर नानक आख्यो आप। लहे परात होवे जिस दात पौड़ी, हम ढाडी वे कार कारे लाया। रात दे कै बार तू फरमाया, ढाडी सच्चे महल खसम बुलाया। सच्चे सिफत सला कपड़ा पाया, सच्चा अमृत नाम भोजन आया। गौरमती खादा राज्य तैन सुख पाया। ढाडी करे पसाऊ शब्द बजाया, नानक सच सलाहे पूरा पाया। सौदा रा गौड़ी वारेरी। महला पहला। चौप दे दो पते, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर काल मूरत अजमन्ने साहिब गौर प्रसाद। पौ मुच पारा बड़ा तोल, मन मत हौली बोले बोल। सिर कर चलिए सहिए पार, नदरी करमी गौर विचार। पै मिन कोई नलंगत पार, पै पौ राख्या पाए सवार। रहाओ पै तन अगन पखे पै नाल, पै पौ पढ़िए शब्द सवार। पै बिन कारत काचिन काच, अंधा सच्चा अंधी सट। बुद्धि बाजी उपजे चाओ, सहज सहन पवे ना ताओ। नानक मन मुख बोलन वाओ, अंधा अखर वाओ दुआओ। गौड़ी महला पहला। डर कर कर डर, डर डर जाए सो डर कहा। जित डर डर पाए, तुद बिन दूजी नाहीं जाए। जो कुछ वरते सब तेरी रजाए। डरिए जे डर होवे होर, डर डर डरना मन का सोर। नहाओ ना जियो मरे ना डूबे तरे, जिन किछ किया सो किछ करे। हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत आसा समान, तिस विच भूख बहुत नहसान। पौ खाना पीना आधार, बिन खादे मर

राम भगत गुर सेवा तरना बहुड जन्म न होई है मरना रहा विचार पदार्थ कह सब कोई समर्थ शास्त्र पंडित मुख सोई बिन गुर अर्थ विचार न पाया मुक्त पदार्थ भगत हर पाया जाके हृदय बसया हर सोई गुरमुखन भगत प्राप्त होई हार की भगत मुक्त आनंद गुरमत पाई परमानंद जन पाया गुर देख दिखाया आशा माय निराश बुझाया दीनानाथ सर्व सुखदाता नानक हर चरणी मन राता गौड़ी चेती महला पहला अमृत काया रह सुखाली बाजिए संसारू लभ लो मच कूड कमावें बहुत उठावें पारू तू काया मैं रोगी देखी जाऊं तारू प्रसारू सुन सुन सिख हमारी सुकृत कीता रहसी मेरे जी अड़े बहोड़ न आवै वारी रहाऊ हों तो दे आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी निंदा चिंदा करें पराई झूठी लाए तबारी बेल पराई जो है जी अड़े करें चोरी बुरियारी हंस चलिया तू पिछे रही है छूटड़ हुई है नारी तू काया रही है सुपनंतर तुद क्या कर्म कमाया कर चोरी मैं जा किस लिया ता मन भला पाया हलतना शोभा पलतना ढोई अहला जन्म गवाया हों खरी दहेली होई बाबा नानक मेरी बात न पूछै कोई रहा उताजी तुरकी सोयना रूपा कपड़ केरे भारा किसी नाल न चले नानक झाड़ू झाड़ पई गवारा कूजा मेवा मैं सब किच रख चाखिया एक अमृत नाम तुम्हारा दे दे नीव दिवाल सारी पस मंदिर की ढेरी संचय संचना दे सही अंध जाने सब सब मेरी सोए न लंका सोए न माड़ी संपै किसैना केरी सुन मूर्ख मन अजाना होग तिसै का भाणा रहा उषा हमारा ठाकुर भारा हम तिसके बन जारी जियो पिंड सब रास तिसै की मार आपे जी वाली गौड़ी चेती माला पहला अवर पंच हम एक जना क्यों रख कर बार मना मारे लूटे नीत नीत कस आगे करी पुकार जना श्री राम नामा उचर मना आगे जम दाल बिकम कना राव उसार मड़ोली रख द्वारा पीतर बैठी सात ना अमृत केल करे नत काम ऊन अवर लुटेण सो पंच जना ढाहे मड़ोली लूटा देह सा धन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना कामन सोने लोड़े सोना रूपा मित्र लोड़ेण सुखादाता नानक पाप परितन कारण जासी जमपुर बाधाता गौड़ी चेती महला पहला मुंदरा ते कट पीतर मुंदरा काया की जय डंड खिंथा ता पंच चेले वस की जय रावल ए मन की जय डंडा ता जोग जोग ते वापसता एक शब्द धो दूजा होर नास्त कंध मूल मन लावसता राव मूंड मुड़ाया जे गुर पाई है हम गुर किन्नी गंगा ता त्रिभुवन तारण हार स्वामी एक न चेतस अंधा ता कर पुटम गलनी मन लावसु संसा मूल न हो जावस्ता एक शरणी जे चित लावहिं लभ लोभ की धावस्ता जापस निरंजन रचस मना काहे बोलै जोगी कपट कना रहा उपाया कमली हंस एना मेरी मेरी करत विहानी ता प्रणवत नानक दा नांगी दा जाए फिर पाशा पछताणी ता गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन है एक है जे कैश दृढ़ चित की जारी जन्म जन्म के पाप कर्म के घट नहारा ली जारी मन एको साहेब भाई रे तेरे तीन गुणा संसार विस्माव लखना लखना जाई रे राव शकर खंड माया तन मीठी हम ताओ पंड उचाई रे रात नेरी सूझस नाही लज टूकस मूसा भाई रे मनमुख करहे तेता दुख लाग गए गुरमुख मिलै बढ़ाई रे जो तन किया सोई हुआ किरत न मिठा जाई रे सो भार भरे न होवै ओणे जो राती रंग लाई रे तन की पंख होवै जे नानक तो मूढ़ा किश पाई रे गौड़ी छेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा केदू थाओ हम आई अगन बिंब जल पीतरऊ निपजे काही कम उपाय मेरे साथ।

आनंद विश्राम रब के चाकर से भले नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा जियरे ओला नाम का अवर जे कारण करावनो तिन पौ है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाइये वड़े भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है आग तिल ना मानी है अहम बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा बार न बलिहार न लख भरिया नामो हो नाम साहेब को प्राण अधरिया रहाओ करन करावन तु ही एक जी जंत की तु ही टेक राजोभन प्रभ तू तनी तू निर्गुण तू सरगुनी इहा उहा तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही तान गौड़ी महला पांजवा हर हर हर आराध्य संत संग हर मन वसै परम हो पौ साधिय रहाओ वेद पुराण सिमृत पने सब ऊच विराजित जन सुने सगल स्थान पै पीत चीन राम सेवक पै रहत कीन लख चौरासी जोन फिरे गोविंद लोक नहीं जन्म मरे बल बुद्ध स्यान पहो मैं रही हर साध सरण नानक गई गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाइय नीत नीत हर सेविय सास सास हर त्याय रहाओ संत संग हर मन वसै दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै संत प्रसाद हर जापिय सो जन दुख न व्यापिय जाको गुर हर मंत्र दे सो उभरिया माया अगन ते नानक को प्रभ मया कर मेरे मन तन वासै नाम हर गौड़ी महला पंजवा रसना जपिय एक नाम इहा हुआ आनंद कना आग्या जिय कै संग काम रहाओ कटिय तेरा अह रोग तू गुर प्रसाद कर राज जोग हर रस जिन जन चाख्या ताकि तृष्णा लाथिया हर विश्राम निद पाया सो बहुर न कत ही ताया हर हर नाम जा को गुरु दिया नानक ताका पौ गया गौड़ी महला पंजवा जा को बिसरे राम नाम ताहु को पीर सा संगत मिल हर रवे से गुणी गहीर रहाओ जाको गुरमुख हृदय बुद्ध ताके कर तल नव निद जो जाने हर प्रभ तनी किछ नाही ताके कमी करने हार पछानिया सर्व सुख रंग माणिया हर तन जाके ग्रस्त वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै गौड़ी महला पंजवा गर्भ बड़ो मूल इतनो रहन नहीं गहो कितनो रहाओ बेबरजत बेद संतना उआहु स्यो हे रे इतनो हार जुआर जुआ बिदे इंद्री वसलै जितनो हरन परन संपूर्णा चरण कमल रंग रितनो नानक उधरे साध संग कृपा निद मैं जितनो गौड़ी महला पंजवा मोहे दासरो ठाकुर को तान प्रभ का खाना रहाओ ऐसो है रे खसम हमारा खिन मैं साज सवारण हारा काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभ के गुण गावा शरण पर्यो ठाकुर वजीरा तिन देख मेरा मन तीरा एक टेक को आधारा जन नानक हर की लागा कारा गौड़ी महला पंजवा है कोई ऐसा हो मैं तो रे इस मीठी ते हे मन हो रे रहाओ अज्ञानी मानुख पया जो नाही सो लो रह रैन अंधारी कारिया कवन जुक्त जित भोरै भ्रम तो हारिया अनिक विधि कर टोरै कहो नानक कृपा पई साध संग निद मोरै गौड़ी महला पंजवा चिंता मन करुणा मय रहाओ दीन दयाला पार ब्रह्म जाके सिमरन सुख पय अकाल पुरख अगाद बोध संत जसो कोट अघप खे कृपा निध प्रभ मया तार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन सरण प्रभु सुख पाए जा दिन बिसरै प्रभ सुखदाता सो दिन जात अजाए रहाओ एक रैन के पाहुन तुम आए बहु जुग आस बधाए गृह मंदर संपै जो दिसै ज्यो तरवर की छाए तन मेरा संपै सब मेरी बाग मिल्ख सब जाए देवन हारा बिस्रियो ठाकुर खिन मैं होत पराए पहरे बागा कर इस नाना चोआ।

पंजवा गुण कीरत निध मोरी रहाओ तू ही रस तू ही जस तू ही रूप तू ही रंग आस ओट प्रभ तोरी तू ही मान तू ही धान तू ही पत तू ही प्राण गुर तूटी लै जोरी तू ही ग्रह तू ही बन तू ही गाओ तू ही सुन है नानक नेर नेरी गौड़ी महला पंजवा मातो हर रंग मातो रहाओ उही पियो ही कियो गुरे दियो दान कियो वाहू स्यो मन रातो ओही पाठी ओही पोचा ओही प्यारो ओही रुचा मन ओहो सुख जातो सहज खेल आनंद खेल रहे फेर भय मेल नानक गुर शब्द परातो राग गौड़ी मालवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर नाम लेहो मीता लेहो हर नाम लेहो मीता लेहो आगे बिखम पंथ पयान रहाओ सेवत सेवत सदा सेव तेरे संग बस्त है काल कर सेवा तू साध की हो कटिए जम जाल होम जग तीरथ किए बिच हो मैं बदे विकार नरक स्वर्ग दोए पहुंचना होए बहुर बहुर अवतार शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी नेचल को थाओ नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो साकत आवे जाहे जैसो गुरु उपदेसिया मैं तैसो कहया पुकार नानक कह सुन रे मना हर कीर्तन होए उधार रा गौड़ी माला महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पायो बाल बुद्ध सुख रे हरख सोग हान मृत दुख सुख चित समसर गुर मिले रहाओ जो लो हो किछ सोचो चितवो तो लो दुखन भरे जो कृपाल गुर पूरा भेटिया तो आनद सहजे जेती स्याणप कर्म हो किए तेते बंद परे जो साधु कर्म मस्तक धरयो तब हम मुक्त भए जो लो मेरो मेरो करतो तब तो लो बिख तेरे मन तन बुद्ध अर्पी कर मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो पोट उठाई चलियो तो लो दान परे पोट डार गुरु पूरा मिलिया तो नानक निर्भय गौड़ी माला महला पांचवा पावन त्यागो री त्यागो त्यागो मैं गुरमिल त्यागो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोविंद आग्यो रहाओ मान अभिमान दो उस माने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरख न आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो बास बासरी कै स्वामी उद्यान दृष्ट आग्यो निरपो भय संत भ्रम डार्यो पूरन सरभाग्यो जो किच करता कारण कीनो मन बुरो ना लाग्यो साध संगत साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जाग्यो जन नानक ओढ़ तुहारी परयो आयो शरण आग्यो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लाग्यो गौड़ी माला महला पंजवा पया लाल रतन मन पाया पाया लाल रतन मन पाया तन शीतल मन शीतल किया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख त्रिस्म सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर मस्तक गुर पूरे धार्यो मन जीतो जग सारी तृप्त अघाए रहे रिद अंतर डोलन ते अब चुकया खोट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मुखे अचर्ज एक सुनो रे भाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकुर जो भेट्यो तो बिसरी तात पराई कहियो ना जाई एह अचंभो तो जाने जिन चाख्या कहो नानक सच भय बिगासा गुर निधान हृदय लै राख्या गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरणी सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते धरणी रहाओ सासत सिमृत बेद बिचारे महापुरखन एओ कहया बिन हर भजन नहीं नारा सुख ना किन्हू लहया तीन पवन की लक्ष्मी जोरी बूझत नाही लहरे बिन हर भगत कहा चित पावे फिर तो पहरे पहरे अनेक विलास करत मन मोहन पूरन होत ना कामा
जल तो कभू न बूझत सगल बिरथे हबेन नामा।

इन्हें कमानो जप तप कछु न साधा दह दिस ले एहे मन उदव रायो कवन कर्म कर बाधा मन तन तन भूम का ठाकुर हो इसका एह मेरा परम मोह कछ सुजस नाही एह पैखर पै पैरा तब एह कहा कमावन परया जब एक सुना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभु सब के छापे करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन एह रचन रचाया कहो नानक करनहार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंचमा हर बिन अवर क्रिया हर बिन अवर क्रिया बिरथे जब तब संजम कर्म कमाने एहे ओ रह मूसे रहाओ बर्त नेम संजम में रहता तिनका आड़ ना पाया आगे चलन और है पाई उहां काम ना आया तीरथ नाए अर तरनी प्रमता आगे ठौर ना पावे उहां काम ना आवे एह बिद ओह लोगन ही पति आवे चतुर वेद मुख बचनी उचरे आगे महल ना पाई है बूझे नाही एक सुधाखर ओह सगली चाक चखाइए नानक कहतो एहो बिचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुर सेवो अर नाम त्यावो त्यागो मनो गुमानी गौड़ी महला पंजवा माधो हर हर हर मुख कहिए हम ते कछु न होवे स्वामी ज्यो राखो त्यो रहिए रहाओ क्या किस करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लाभो ते थी लागा पूरन खस्म हमारे करो कृपा सर्व के दाते एक रूप लेव लाभो नानक की बेनंती हर पह अपना नाम जपावो रा गौड़ी माज महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

क्या पेखा क्यों पेखा प्रीतम कवन सुकरणी जियो संता दासी सेवा चरणी जियो एहो जियो बताई बल बल जाई जियो तिस निव निव लागो पाई जियो पोथी पंडित बेद खोजनता जियो हुए बैरागी तीरथ नावंता जियो गीत नाद कीर्तन गावंता जियो हर नैर पौ नाम ते आई जियो पय कृपाल स्वामी मेरे जियो पतित पवित लग गुर के पैरे जियो भ्रम पौ काट किए निर्वैरे जियो गुरमन की आस पुराई जियो जिन नाओ पाया सो धनवंता जियो जिन प्रभ त्याया सो शोभावंता जियो जिस साधु संगत तिस सब सुकरणी जियो जन नानक सहज समाई जियो गौड़ी महला पंजवा माझ आओ हमारे राम प्यारे जियो रैन दिनस सास सास चितारे जियो संत देव संदेसा पै चरणारे जियो तुद बिन कित बिद तरिए जियो संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो वन तिण त्रिभवन सुख परमानंदा जियो सेख सुहावी एहो मन बिग संदा जियो पेख दर्शन एहो सुख लहिए जियो चरण पखार करी नित सेवा जियो पूजा अर्चा बंधन से देवा जियो दासन दास नाम जप लेवा जियो बिनो ठाकुर पह कहिए जियो इस कुनी मेरी मन तन हरिया जियो दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो हर हर नाम जपे जप तरिया जियो एहो अजर नानक सुख सही है जियो गौड़ी माज महला पंजवा सुन सुन साजन मन मित प्यारे जियो मन तन तेरा एहो जियो पी वारे जियो विसर नहीं प्रभ प्राण अधारे जियो सदा तेरी शरण आई जियो जिस मिलिए मन जीवे भाई गुर प्रसादी सो हर हर पाई जियो सब किस प्रभ का प्रभ किया जाई जियो प्रभ को सद बल जाई जियो यो निदान जपै वड भागी जियो नाम निरंजन एक रत्न पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो तू सच्चा साहो भगत बन जा रा जियो हर धन रास सच वापारा जियो जन नानक सद बलिहारा जियो रा गौड़ी माज महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू मेरा बहुमान करते तू मेरा बहुमान जोर तुम्हारे सुख वसा सच शब्द निशान रहाओ सबे गला जातिया सुन कै चुप किया कद ही सुरत ना लदिया माया मोहड़िया दे बुझारत सारता से अखी बिछड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहे आ एक दोहो चहो क्या गणी सब एकत साध मुठी एक अध नाय रसियड़ा का विरली जाए बुठी भगत सचे दर सोह दे अनाद करे सद आनंद करे दिन रात रंग रते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौड़ी महला पंजवा मांझ दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराधी है पूरन सतगुर ज्ञान रहाओ जित कट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ जम कंकर नेड़ ना आवई रसना हार गुण गाओ सेवा सुरत ना जानिया ना जापै आराध ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध पय कृपाल गुसाइया नठे सो संताप सत्ती वाओ न लगई सतगुर रखे आप गुर नारायण दय गुर गुर सच्चा सिरजनहार गुर तुठे सब किछ पाया जन नानक सद बलिहार गौड़ी माज महला पंजवा हर राम राम राम रामा जप पूरन होए कामा रहाओ राम गोबिंद जपे दिया हुआ मुख पवित्र हर जस सुनिए जिस ते सोई भाई मित्र सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे क्यों गोबिंद मनो विसारिय जिस सिमरत दुख जाहे जिस लड़ लगिए जीविय भव जल पिय पार मिल साध

बिन परमेश्वर जो करे पेट सो जीवन सोए अंचल गह कै साधका तरना यो संसार पार भ्रम आराध्य उदरह सब परवार साजन बंद सुमित्र सो हर नाम हृदय दे अवगण सब मिटाय कै पर

0: का गौड़ी महला पांचवा साधो मन का मान त्यागो काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहिंस भागो रहाओ सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना हर सोग ते रहे अतीता तिन जग तत पछाना उस्तत निंदा दो त्यागै खोजै पद निर्वाना जन नानक एहो खेल कठन है किन्हूं गुरमुख जाना गौड़ी महला नौवा साधो रचना राम बनाई इक बिन से इक अस्थिर मान अचरज लख्यो न जाई रहाओ काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यो सुपना रह नाई जो दी सैसो सगल बिना सह ज्यो बादर की छाई जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहो राम सरनाई गौड़ी महला नौवा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे अहिनस मगन रह माया में कहो कैसे गुण गावे रहाओ पूत मीत माया ममता स्यो एह विद्याप बंधावे मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग देख तास उठतावे भुगत मुगत का कारण स्वामी मूड ताहे बिसरावे जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे गौड़ी महला नौवा साधो ए मन गयो ना जाई चंचल तृष्णा संग बस है या ते फिर न रहाई रहाओ कठन क्रोध कट ही के पीतर जेह बिद जेह सुध सब बिसराई रतन ज्ञान सबको हिर लीना ता स्यो कछु न बसाई जोगी जतन करत सब हारे गुनी रहे गुन गाई जान नानक हर पय दयाला तव सब बिद बने आई गौड़ी महला नौवा साधो गोविंद के गुन गावो मानस जन्म अमोलक पायो व्यर्था काहे गवावो रहाओ पतित पुनीत दीन बंद हर सरन ताहे तुम आवो गज को त्रास मिट्यो जह सिमरत तुम काहे बिसरावो ताज अभिमान मुह माया फुन भजन राम चित लावो नानक कहत मुक्त पंथ एहो गुरमुख होए तुम पावो गौड़ी महला नौवा को माई भूल्यो मन समझावे वेद पुराण साध मग सुन कर निमख न हर गुण गावे रहाओ दुर्लभ देह पाए मानस की व्यर्था जन्म सिरावे माया मोह महासंकट बन तास्यो रुच उपजावे अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो निहो न लावे नानक मुक्त ताहे तुम मानो जेहे काट राम समावे गौड़ी महला नौवा साधो राम सरन बिसरामा वेद पुराण पढ़े को एह गुण सिमरे हर को नामा रहाओ लोभ मोह माया ममता फुन औ बिखियन की सेवा हरख सोग परत जेह नाहन सो मूरत है देवा सुर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यो कंचन अर पैसा उस्तत निंदा ए सम जाके लोभ मोह फुन तैसा दुख सुख ए बादे जेह नाहन तेह तुम जानो ज्ञानी नानक मुक्त ताहे तुम मानो एह बिद को जो प्राणी गौड़ी महला नौवा मान रे कहा पयो तै बौरा अहनस औद कटै नहीं जाने पयो लोभ संग हवरा रहाओ जो तन तै अपनो कर मान्यो अर सुंदर ग्रह नारी इन में कछु तेरो रे नाहन देखो सोच बिचारी रतन जन्म अपनो तै हार्यो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन पयो चरणन स्यो बिरथा औद सिरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुन गावे और सगल जग माया मोहिया निरपै पद नहीं पावे गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल पै भंजन करन ताहे तुम पर रे रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत ताको नाम ही है मो तर रे पवन पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर नह पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करुणा में पव सागर के पार उतर रे रा गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी ग्वारे री ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निद निद निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मझार गुर की मत जिय जाई गुर की मत जिय आई कार इन विद राम रमत मन मान्या ज्ञान अंजन गुर शब्द पछान्या रहाओ एक सुख मान्या सहज मिलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पय सूहा रंग माया नदर पई दिख ठाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जाग्या शब्द रवे मन हर स्यो लाग्या रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ पाग्या साध रहे बादंग अंकारा चित हर स्यो राता हुकम अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई न देखो मीत किससे वो किस देवो चीत भगत करी राचो हर नाए सिख्या दीख्या भोजन पाओ हुकम संजोगी निज घर जाओ गर्व गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे समाना लिख्त मिटे नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना नह भूलो नह परम भुलाना कथो न कथनी हुकम पछाना नान गुरमत सहज समाना गौड़ी ग्वारे री महला पहला मन कुंचर काया उद्यान गुर अंकस सच शब्द निशान राज द्वार सोवन सो मान चतुराई नह चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर्म है अमृत तस कर ले नाकार न कोय करे राखे आप वड्याई दे नील नील अगन कठाई जल निवरी गुर बूझ बुझाई मन दे लिया रस गुण गाई जैसा घर बाहर सो तैसा बैस गुफा मह आखो कैसा सागर डूगर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन निडरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने तीने पौन जिन कहया तिन कहन बखान्या जिन बुझया तिन सहज पछान्या देख बिचार मेरा मन मान्या कीरत सूरत मुक्त एक नाई तही निरंजन रहया समाई निज कर व्याप रहया निज ठाई उस्तत करे केते मुन प्रीत मन तन सूचे साच सोचीत नानक हर भज नीता नीत गौड़ी ग्वारेरी महला पहला ना मन मरे न कारज होए मन वस दूता दुर्मत हो दोए मन मान गुर ते एक होए निर्गुण राम गुण है वस होए आप निवार बिचारे सोए रहो मान भूलो बहु चित्त विकार मन भूलो सिर आवै पार मन मान हर एक अंकार मन भूलो माया कर जाए काम विरुद्धो रह ना ठाए हर भज प्राणी रसन रसाए गैवर हैवर कंचन सुत नारी बहु चिंता पिड़ चाले हारी जुए खेलन काची सारी संपौ साची पय विकार हरख सोख उभे दरबार सुख सहजे जप हृदय मुरार नदर क्रेता मेल मिलाए गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावै सब दुख निवास मनमुख मूड माया चितवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिख्यास मनचन चल तावत फुन तावै साचे सूचे मैल ना पावै नानक गुरमुख हर गुण गावै गौड़ी ग्वारेरी महला पहला होमै करत्या नह सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बिगूते भावै दोए सो कमावै तुर लिख्या होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मागै नाम विसारी रहाओ अदिष्ट दिसै ता कहया जाए बिन देखे कहना बिरथा जाए गुरमुख दीसै सहज सुभाए सेवा सुरत एक लेव लाए, सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार परोए, एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए, कृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सहज सुभाए, गुरमति नाम हृदय बसाए, साची बाणी हर गुण गाए, तन मह साचो गुरमुख पाओ, नाम बिना नाही निज ठाओ, प्रेम परायण प्रीतम राओ, नदर करे ता बूझे ठाओ, माया मोह सर्ब जंजाला, मनमुख कुचील कुचित बिकराला, सतगुर सेवे चुके जंजाला, अमृत नाम सदा सुख नाला, गुरमुख बूझै एक लिव लाए, निज कर वासै साथ समाए, जमन मरना ठाक रहाए, पूरे गुरते एह मत पाए, कथनी कथो न आवै और, गुर पुछ देख्या नाही दर होर, दुख सुख पाणै तिसर जाए, नानक नीच कह लिव लाए, गौड़ी महला पहला, दूजी माया जगत चितवास, काम क्रोध अहंकार विनाश, दूजा कौन कहा नहीं कोई, सब मह एक निरंजन सोई, रहाओ दूजा दुरमत आखे दोए, आवै जाए मर दूजा होए, तरण गगन नह देखो दोए, नारी पुरख सबाई लोए, रस सस देखो दीपक उजियाला, सर्ब निरंतर प्रीतम बाला, कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुर मोको एक बुझाया, एक निरंजन गुरमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता, एको शब्द एको हुकम वर्तै सब लोई, एकस ते सब ओपत होई, रहा हो दोवै खसम एको जान, गुर कै शब्द हुकम पछाण, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे ता साचा, मुक्त भेद क्या जाना काचा, ऐसा जोगी जुगत बीचारे, पंच मार साच उर तारे, रहाओ जिसके अंतर साच वसावे, जोगी जुगत की कीमत पावे, रव सस एको ग्रह उद्यान करनी, तीरथ कर्म समान, एक शब्द एक भिख्या मागे, ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे, पैरच रह न बाहर जाए, कीमत कौन रह लिव लाए, आपे मेले भरम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, हो मैं मारे करनी सार, जप तप संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान, गौड़ी महला पहला, खिमा गही ब्रत सील संतोखं, रोग ना व्यापै ना जम दोखं, मुक्त पय प्रभ रूप न रेखं, जोगी को कैसा डर होए, रूप बिरख ग्रह बाहर सोए, रहाओ निरपो जोगी निरंजन थ्यावै, आन दिन जागे सच ले बलावै, सो जोगी मेरे मन पावै, काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्भ निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रह सो निरपो होए, जैसा सेवै तैसो होए, नर निहिक इवल निरपो नाओ, अनाथ नाथ करे बल जाओ, पुनरप जन्म नाही गुण गाओ, अंतर बाहर एको जाने, गुर कै शब्दे आप पछाने, साचे शब्द दर निसाने, शब्द मरै तिस निज घर वासा, आवै ना जावै चूकै आसा, गुर कै शब्द कमल पर गासा, जो दिसै सो आस निरासा, साम क्रोध बिख भूख प्यासा, नानक बिरले मिले उदासा, गौड़ी महला पहला, ऐसो दास मिले सुख होई, दुख विसरै पावै सच सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अठसठ मजन चरण है धूरी, रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेहवा सूची हर रस सारा, सच करनी अब अंतर सेवा, मन तृप्ता से आलख पेवा, जह जह देखो तह तह साचा, बिन बूझे जगरत जग काचा, गुर समझावै सो जी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु भय बेताले, गुर कहिया अवर नहीं दूजा, किस कहो देख करो अन पूजा, संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे, आत्म चीन सो तत विचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास प्राण पत नानक हम ताके दास। गौड़ी महला पहला ब्रह्मे गर्भ किया नहीं जान्या, वेद की बेपत पड़ी पछुतान्या। जह प्रभ सिमरे तही तुम मन मान्या, ऐसा गर्भ बुरा संसार है। जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है, रहो बल राजा माया अहंकारी। जगन करे बहुपार अफारी, बिन गुर पूछे जाए प्यारी। हरी चांद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंत ना पाए अपेवे। आप भुलाए आपे मत देवे, दुर्मत हरनाख दुराचारी। प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी, प्रहलाद उधारे कृपा धारी। भूलो रावण मुक्त अचेत, लूटी लंका शीस समेत। गर्भ गया बिन सतगुर हेत, सहस बाहो मधु कीट मह खासा। हर नाखसले नखो बिदासा, दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा। जरा संध काल जमन संघारे, रक्त बीज काल नेम बिदारे। दैत संघार संत निस्तारे, आपे सतगुर शब्द विचारे। दूजे पाए दैत संघारे, गुरमुख साच भगत निस्तारे। बूढ़ा दुर्योधन पत खोई, राम ना जान्या करता सोई। जन को दुख पचै दुख होई, जन मेजे गुर शब्द ना जान्या। क्यों सुख पावे भरम भुलान्या, एक तिल भूले बहुर पछुतान्या। कंस केस चांडूर ना कोई, राम ना चिन्या अपनी पत खोई। बिन जगदीश ना राखे कोई, बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए। गुरमत धर्म धीरज हर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए। गौड़ी महला पहला, चोआ चंदन अंक चढ़ावो। पाठ पटंबर पहरे खढ़ावो, बिन हर नाम कहा सुख पावो। क्या पहरो क्या ओड़ दिखावो, बिन जगदीश कहा सुख पावो। रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला। बिन जगदीश कहा सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी। खोड़ सिगार करै अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित कुआरी। दार घर महला सेज सुखाली, अहनस फूल बिछावै माली। बिन हर नाम सो देह दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे। लस्कर नेब खवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे दिवाजे। सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो, ताज कुल है सिर छत्र बनावो। बिन जगदीश कहा सच पावो, खान मलूक कहावो राजा। अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द न वर्ष। बिन गुर शब्द न सबरस काजा, हौं मैं ममता गुर शब्द विसारी। गुरमत जान्या हृदय मुरारी, प्रणवत नानक सरण तुमरी। गौड़ी महला पहला, सेवा एक न जानस अवरे। पर पंच ब्याद त्यागै कवरे, पाए मिले सच सच है सच रे। ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाए मिले मल तोई। रहाओ ऊंधो कवल सगल संसार है, दुर्मत अगन जगत पर जार है। सोबर गुर शब्द विचार है, प्रेंग पतंग कुंचर अरमीना। मिर्ग मरै सह अपुना कीना, तृष्णा राच तत नहीं बीना। काम चितै कामन हितकारी, काम क्रोध विनाशै सगल विकारी। पत मत खोवे नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए। गल जेवरी तंदै लपटाए, मन मुख चुटस हर गुण गाए। जो तन विधवा पर को देई, काम दाम चित पर वस से। बिन फिर तृप्त न कबू होई, पढ़ पढ़ पोथी सिमरित फाठा। वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा। ज्यो चात्रिक जम प्रेम प्यासा, ज्यो मीना जल माहे उलासा। नानक हर रस की तृप्तासा। गौड़ी महला पहला, हठ कर मरै न लेखे लपावै। वेस करै बहु भस्म लगावै, नाम विसार बहुर पछुतावै। तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सहज जम दुख। रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर। नाम विसारिय सब कूड़ो कूड़, नेजे वाजे तख्त सलाम। अदकी तृष्णा व्यापै काम बिन हर जाचे भगत ना नाम वाद अहंकार नाही प्रभु नाम बिसारिय सब पूड़ो रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर माया मगन परम पद दूर नाम बिसारिय सब कूड़ो पूर नेजे वाजे तख्त सलाम अधकी तृष्णा व्यापै काम बिन हर जाचे भगत ना नाम वाद अहंकार नाही प्रभ मेले मन दे पावे नाम सुहेले दूजे पाए अज्ञान दुहेला बिन दम के सौदा नहीं हाट बिन बोहित सागर नहीं वाट बिन गुर सेवे काटे काट तिसको बाहो बाहो जे वाट दिखावे तिसको बाहो बाहो जे शब्द सुनावे तिसको बाहो बाहो जे मेल मिलावे बाहो बाहो तिसको जिसका एहो जियो गुर सब दी मत अमृत पियो नाम वडाई तुद भाणे दियो नाम बिना क्यों जीवा माए आन दिन जपत रहो तेरी शरण आए नानक नाम रते पत पाए गौड़ी महला पहला हम मैं कर देखी नहीं जानिया गुरमुख भगत विरले मन मान्या हो हो करत नहीं सच पाइए हम मैं जाए परम पद पाइए रहाओ हम मैं कर राजे बहुत आवे हम मैं खपहे जन्म मर जावे हम मैं निवरै गुर शब्द विचारै चंचल मत त्यागे पंच संघारे अंतर साच सहज कर आवे राजन जान परम गत पावे सच करनी गुर परम चुकावे निरपौ कै कर ताड़ी लावे हौ हौ कर मरना क्या पावे गुर पूरा पेटे सो झगर चुकावे जेती है तीती क्यों नाही गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही हौ मैं बंधन बंध पवावे नानक नाम भगत सुख पावे गौड़ी महला पहला प्रथमे ब्रह्मा का लै कर आया ब्रह्म कमल पयाल ना पाया आज्ञा नहीं लीनी परम भुलाया जो उपजय सो काल संघारिया हम हर राखे गुर शब्द विचारिया रहाओ माया मोहे देवी सब देवा काल ना छोड़े बिन गुर की सेवा ओ अविनाशी अलख पेवा सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना नाम हो भूले जम का दुख सहना मैं तर नाम ज्यो राखो रहना चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम सह मरहे संचे माया दाम मैं तन दीजे हर अमृत नाम रैयत महर मुकदम सिकदार नहीं चल कोई ना दिसे संसार अफरियो काल कूड़ सिर मारे नहीं चल एक सच्चा सच सोई जिन कर साजी तिन्हे सब गोई ओह गुरमुख जापै ता पत होई काजी सेख भेख फकीरा वडे कहावे हो मैं तन पीरा काल ना छोड़े बिन सतगुर की धीरा काल जाल जेहवा अर नैनी कानी काल सुनै बिख बैनी बिन शब्द मूठे दिन रैनी हृदय साच वसै हर नाए काल ना जोहे सकै गुण गाए नानक गुरमुख शब्द समाए गौड़ी महला पहला बोले साच मिथ्या नहीं दाई चाले गुरमुख हुकम रजाई रहे अतीत सच्चे शरण आई सच कर बैसे सच कर बैसै काल ना जो है मनमुख को आवत जावत दुख मोह रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ रही है निज कर बैस सहज कर लही है हर रस माते हो सुख कही है गुरमत चाल निचल नहीं डोले गुरमत साच सहज हर बोले पीवे अमृत तत बिरोले सतगुर देख्या दीख्या लीनी मन तन अर्प्यो अंतर गत कीनी गत मित पाई आत्म चीनी भोजन नाम निरंजन सार परमहंस सच जोत पार जह देखो तह एकंकार रह निरालम एका सच करनी परम पद पाया सेवा गुर चरणी मन ते मन मान्या चूकी अह भ्रमणी इन बिद कौन कौन नहीं तरिया कौन नहीं तारिया हर जस संत भगत निस तारिया प्रभु पाए हम अवर ना पारिया, साच महल गुर अलखल खाया, निहचल महल नहीं छाया, माया साच संतोखे परम चुकाया, जिन कै मन वसया सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मल खोई, गौड़ी महला पहला, राम नाम चित रापै जाका उपजंप, दर्शन की जय ताका, राम ना जपो अपाग तुम्हारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा रहाओ, गुरमत राम जपै जन पूरा, तित कट अनहत बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा तार, जिनके हृदय हर हर सोई, तिनका दर्श परस सुख होई, सर्व जिया मह एको रवै, मनमुख अहंकारी फिर जूनी पवै, सो बुझे जो सतगुर पाए, हमै मारै गुर सबदे पाए, अर्द उर्द की संद क्यों जाने, गुरमुख संद मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन तरिए, सोलह अष्टपदिया ग्वारेरी गौड़ी किया, गौड़ी बैरागण महला पहला, एक वंकार सतगुर प्रसाद, ज्यो गाई को गोयली राखे कर सारा, अहनस पाले राख लेहे आत्म सुख तारा, इत उत राखो दीन दयाला, तो शरणागत नदर निहाला, रहाओ जह देखो तह रव रहे, रख रखनहारा, तू दाता भुगता तू है, तू प्राण अधारा, किरत पया अध उर्दी बिन ज्ञान बिचारा, बिन उपमा जगदीश की बिन सैना अंधियारा, जग बिन सत हम देखिया, लोभे अहंकारा, गुर सेवा प्रभ पाया, सच मुक्त द्वारा, निज कर महल अपार को, अपरम पर सोई, बिन सब दे तिर को नहीं, बुझे सुख हुई, क्या ले आया ले जाए, क्या फासे जमजाला, डोल बद्धा कस जेवरी आकाश पाताला, गुरमत नाम ना विसरे, सहजे पत पाइये, अंतर शब्द निधान है, मिल आप गवाइये, नदर करे प्रभ अपनी, गुण अंक समावे, नानक मेल ना चुके, लाहा सच पावे, गौड़ी महला पहला, गुर प्रसादी बूझले तो हुए निबेरा, कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा, बिन गुर शब्द ना छूटिए, देखो विचारा, जे लख कर्म कमावही, बिन गुर अंधियारा रहाओ, अंधे अकली बाहरे क्या तिन स्यो कहिए, बिन गुर पंथ ना सूझे, कित बिद निर्वहिए, खोटे को खरा कहे खरे सार ना जाने, अंधे का नाओ पार फूकली काल विराने, सूते को जागत कहे जागत को सूता, जीवत को मुआ कहे नहीं रोता, आवत को जाता कहे जाते को आया, परकी को अपनी कहे अपनों नहीं पाया, मीठे को कौड़ा कहे कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करे ऐसा कल मह डीठा, चेरी की सेवा करे ठाकुर नहीं दिसे, पोखर नीर विरोली है माखन नहीं रिसे, इस पद जो अर्थ आए ले सो गुर हम सो गुरु हमारा, नानक जी ने आपको सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा से बूझिए सब ब्रह्म समाया, राग गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मन का सूतक दूजा पाओ पर में पूले आवो जाओ, मान मुख सूतक कभे ना जाए, जिचर शब्द ना पीजे हर कह नाए रहाओ, सबो सूतक जेता मोह आकार मर मर जमै वारो वार, सूतक अगन पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किछ खाए,
1: सूतक कर्म न पूजा हुए, पूजा हुए नाम रते मन निर्मल हुए, सतगुरु सेविए सूतक जाए, मरे न जाने कारण खाए, शास्त्र स्मृत सूद देखो कोए, बिन नावी को मुक्त न हुए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मैं गुरमुख उतरस पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रहे समाए, गौड़ी महला तीजा गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय गुर तारा, गुरमुख सोभा साच द्वारा, पंडित हर पढ़ तजो बिकारा, गुरमुख पौजल उतरो पारा। ਸਹਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਰੇ ਮੈਲ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਮਕਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੱਚ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰ ਜਲਾਏ ਦੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰ ਬੁੱਧ ਪੂਜੋ ਸੋਈ, ਲੋਕ ਸਮਝਾਵੋ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਮਨਮੁਖ ਡੰਪ ਬਹੁਤ ਚਤਰਾਈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਮਾਵੇ ਸੁਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ, ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਠੋਰ ਨਕਾਈ। ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਬਾਗ ਜੋ ਲਾਏ ਵਹਿ ਨਿਤ ਧਿਆਨਾ। ਜਮ ਪਕੜਿਆ ਤਬ ਹੀ ਪਛਤਾਨਾ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਿਲੇ ਹਰ ਸੋਈ, ਗੁਰਦਾਤਾ ਤਬ ਹੀ ਗੁਰਦਾਤਾ ਅੱਜ ਪਿਚਾਰੇ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤ ਪਤ ਨਾਵੇਂ ਵਡਿਆਈ, ਸਾਇਰ ਕਬੂਤਰੀ ਵਿਦਾਰ ਗਵਾਈ। ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤ ਪਤ ਨਾਵੇਂ ਵਡਿਆਈ, ਸਾਇਰ ਕਬੂਤਰੀ ਵਿਦਾਰ ਗਵਾਈ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਝੂਠੀ ਚਤਰਾਈ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਕਾ ਧਰਮ ਪੜੋ ਤੁਮ ਭਾਈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਖਾਈ। ਰਾਮ ਪੜੋ ਮਨ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਰਹਾਓ। ਬਾਦ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮਨ ਤਨ ਫੀਕਾ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਉਮੈ ਮੈਲਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰਾ। ਨਿਤ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਹੰਕਾਰਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੇਟੇ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰਾ। ਸੋ ਜਨ ਸਾਚਾ ਜੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੰਚ ਸੰਘਾਰੇ। ਆਪ ਤਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਟਬਾਜੀ ਪਾਈ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਰਹੇ ਲਪਟਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਲਪਤ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਈ। ਬਹੁਤੇ ਭੇਸ ਕਰੇ ਭੇਸ ਤਾਰੀ, ਅੰਤਰ ਤਿਸਨਾ ਫਿਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਆਪਨ ਜਿਨੇ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ, ਕਾਪੜ ਪਹਿਰ ਕਰੇ ਚਤਰਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅਤ ਪਰਮ ਭਲਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਲੈ ਰਾਗੀ, ਨਿਰਹੀ ਅੰਤਰ ਸਾਚ ਲਿਵਲਾਗੀ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੂਲ ਵੇਦ ਅਭਿਆਸਾ, ਤਿਸਤੇ ਉਜੇ ਦੇਵ ਮੋਹੇ ਪਿਆਸਾ। ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਪਰਮੇ ਨਾਹੀ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ, ਹਮ ਹਰ ਰਾਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਨਦਿਨ ਭਗਤ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰੜਾਇਆ ਰਹੋ। ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਜੰਜਾਲਾ, ਪੜ ਵੇਦ ਦੁਖਾਣੇ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਜਮਕਾਲਾ। ਤਤਨ ਚੀਨੇ ਬੰਨੇ ਪੰਡ ਭਰਾਲਾ, ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨ ਕੁਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਵਹ ਕਰਮ ਦਰੜਾਏ, ਪਵਜਲ ਡੁੱਬੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ ਪੰਡਿਤ ਖਾਵੇ, ਦਿਖਿਆ ਰਾਤਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਜਮਕਾ ਗੱਲ ਜੇਵੜਾ ਨਿਤ ਕਾਲ ਸੰਤਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਮਕਾਲ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਉਮੈ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਵੇ, ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਤ ਮਹਿਲ ਪਾਵੇ। ਸਦਗੀ ਨਿਰਮਲ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ, ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਦਿੱਤੇ ਯੁਗ ਮਾਹੀ। ਤਿਨਕੋ ਸਭ ਨਿਭੇ ਅਨਦਿਨ ਪੂਜ ਕਰਾਹੀ, ਸਹਿਜੇ ਗੁਣ ਰਵੇ ਸਾਚੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮੇਟੇ ਚੌਥੇ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲਾਇਆ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਬਾਦ ਵਖਾਣੇ, ਅੰਤਰ ਤਾਮਸ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਖਾਣੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਿਰ ਕਾਲਨ ਖਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਰਹੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀਧੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਰੀਧੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਧੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਕੇ ਮਨ ਪਾਏ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਆਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਪਰਮ ਭਲਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸਦਾ ਬਿਖ ਖਾਏ, ਜਮ ਡਾਂਡ ਸਹਿ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਮੂਹਨ ਜੋਹੇ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਸੱਚ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਸਦਾ ਰਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿਵਿਤਾ। ਮਨ ਸਿਓ ਮਨ ਮਲਾਏ ਸਭ ਜਗ ਜੀਤਾ, ਇਨ ਵਿਦ ਕੁਸਲ ਤੇਰੇ ਨਿਰਮੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਵਨ ਨਾ ਸਿੱਧੋ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭਗਤੀ ਸਿੱਧੇ ਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਖਾਣੇ ਪਰਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਬੰਧਨ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੁਕਤ ਤਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੁਗ ਮਾਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਮ ਗਵਾਏ, ਸਹਿਜ ਤਨ ਉਪਜੇ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਰਹਾਉ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕਾਲੇ ਕੀ ਸਿਰਕਾਰਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਉਪਾਵਣ ਹਾਰਾ, ਮਰ ਜੰਮੇ ਫਿਰ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ, ਅੰਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੂਲ ਛੋੜ ਲਾਗੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈ, ਬਿਖ ਕਾ ਮਾਤਾ ਬਿਖ ਮਾਹੇ ਸਮਾਈ, ਮਾਇਆ ਕਰ ਮੂਲ ਜੰਤਰ ਭਰਮਾਏ, ਹਰ ਜਿਉ ਵਿਸਰਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ, ਅੰਤਰ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਸੱਚ ਵਰਤਾਏ, ਸੱਚ ਨ ਛਪੇ ਜੇ ਕੋ ਰੱਖੇ ਛਪਾਏ, ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਸਹਿਜ ਸਵਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਹਰਿਆ ਲਿ ਬੁਲਾਏ, ਹੋਮੇ ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ, ਧਾਵਤ ਰਾਖੇ ਠਾਕਰ ਹਾਏ, ਪੂਰੇ